की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Pe. पूरा का पूरा गाना ही इतना शानदार है, बी इट गुलजार साहब की आवाज एकदम शुरुआत में टू अरिजीत सिंह की अमेजिंग आवाज उसके बाद में। सो वेल गुड मॉर्निंग, 8 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 6 मिनट, रेडियो मसी 24/7 अंतर आपके साथ, मसी का मंत्र चल रहा है। थोड़ी देर पहले पिछले घंटे में क्रिकेट की बात हो रही थी एंड आई वॉज लाइक ओ ये भी तो होने वाला है। आज 22nd of September भाई इंडिया एंड जापान जो है आर प्लेइंग ईच अदर फॉर द वेरी फर्स्ट time ever in men's international cricket. It's a one-off T20 national Suzuki Cup ki baat kar rahi hu main yahan pe. It's happening at the Sano International Cricket Ground in Tochigi Prefecture, Japan mein. Aur mujhe itni sahi lagi ye story, badi interesting hai because Japan bolo to hamare dimag mein you know baseball definitely cricket se pehle aata hai. Cricket आई थिंक इंडिया से ज्यादा एसोसिएट कर पाते हैं हम लोग। इनफैक्ट क्रिकेट इज रिलेटिवली स्मॉल स्पोर्ट जो है देयर एंड जापान इज करंटली रैंक 41st इन मेंस T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स, बट टुडे दे गेट टू प्ले भाई चैंपियंस के साथ, नंबर वन के साथ, वो भी हमारी इंडियन टीम के साथ। सो देयर इज अ मच बिगर स्टोरी बिहाइंड द मैच। सो इंडिया एंड जापान आर मार्किंग 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ये जो मैच है लॉन्चेस द स्पोर्टिंग सेलिब्रेशंस अराउंड द माइलस्टोन। इट्स आल्सो यूजफुल प्रिपरेशन फॉर बोथ द टीम्स अहेड ऑफ मेंस क्रिकेट कॉम्पिटिशन एट द एशियन गेम्स जो कि बिल्कुल ऑलरेडी चल रहा है। इंडिया के कैप्टन साहब श्रेयस अय्यर come into this after completing a 3-0 ka T20 international series win over Afghanistan, while Japan will be led by Kendall Kadowaki Fleming. By the way, वो जो social media पे एक Japanese baseball player, his name is Gian, बिल्कुल जी उनकी काफी viral हो रही है because this guy is actually a very very good baseball player, but now he is going to hold a cricket bat instead of a बेसबॉल बैट। भाई एक वही है बट द इंडिया जापान का मैच इज एब्सोल्युटली हैपनिंग। ऑनेस्टली आई लव द फैक्ट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। कभी कभी स्पोर्ट्स सिर्फ जीत हार के बारे में नहीं होता है, देर आर टू कंट्रीज टू वेरी डिफरेंट स्पोर्टिंग कल्चर्स और बीच में एक क्रिकेट पिच kind of bringing them together. So India and Japan and a little bit of history being made today. मैंने सोचा ये भी बात बिल्कुल करनी बनती है रेडियो मस्ती 24/7 पर। हाँ मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कभी होती नहीं हूँ या फिर मैं एडमिट नहीं करती। That is a different ball game altogether. Good morning.

8:13 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, एंड इफ यू वांट टू विन सम डांडिया टिकट्स देन स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ वही लेकर आने वाली हूँ बस इस गाने के उस पार, सो गेट रेडी।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus present Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Aha.
3: Suat.
1: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
4: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
5: वेयर आर योर डांसिंग शूज सिंगापुर? भाई तैयार ही हो जाओ, ये मौसम और ये सीजन इतना कमाल का होता है। यू नो फेस्टिव सीजन डज समथिंग टू मी एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डांडिया। ओहो क्या बात है, 8:22 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतरा आपके साथ है। एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट वी इंडस का द वेरी वेरी फेमस बॉलीवुड डांडिया नाइट। भाई इतना ही शानदार होता है एवरी सिंगल टाइम, क्या मजे ही आ जाते हैं, है ना। आई थिंक यही बात करते करते ही वाइब आनी शुरू हो जाती है, एंड स्पेशली देन व्हेन यू अल्टीमेटली बी देयर यू आर लाइक दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। यू आर लिविंग इन द moment and you are dancing your heart out, hai na. To well ye jo hamara Bollywood Dandiya night hai, so it is Saturday ko bilkul kiya ja raha hai 10th of October sham 6 baje se Khalsa Association Building Singapore mein. $30 ki, only $30 ki ticket hai for adults, $15 ki ticket hai for bacche between 7 to 12, 6 year and below aap sri chhoton ke liye free. And कमाल की बात है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि ग्रुप डिस्काउंट है। एंड अगर आपको ग्रुप डिस्काउंट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप इनको करना पड़ेगा, नंबर लिख लीजिए 9022-1210, 9022-1210। एंड अब मैं वो करना चाहती हूँ जिसका इंतजार आप भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतरा वो करो ना, सवाल पूछती हो और हम जवाब देते हैं। तो ये थोड़ा सा म्यूजिकल वाला है, तो आई एम गोइंग टू प्ले इंट्रो म्यूजिक, नहीं हो जरूरी नहीं है हर बार ही म्यूजिक हो, एक गाने का इंट्रो प्ले करने वाली हूँ, ठीक है, और आपने मुझे गाने को गेस करके बताना है। सो आर वी रेडी? 1 and 2 and 3 and 4। बताओ आपने सोचा और सोच के कि अरे बस थोड़ा सा और अंतरा प्ले कर दो, बस फिर तो गाना ही पता चल जाएगा ना। बट मैंने हिंट तो आपको दे दी है। यू हैव टू गेस द सॉन्ग एंड टेल मी 9158963 पर इफ यू वांट अ बॉलीवुड डांडिया नाइट का टिकट जीतने का चांस। यू वांट वन मोर टाइम? ये लो। अब मैं प्ले कर रही हूँ एकदम ही डिफरेंट गाना, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ। ये भी करने में मुझे बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: क्या गाने ही प्ले हो रहे हैं। हाँ, मैं खुद की ही तारीफ कर रही हूँ, देयर इज नो हार्म इन दैट। 8:34 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे, रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर। चलिए ट्रैफिक का अपडेट लेते हैं। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स अटवास बिटवीन जलान बहार एंड जुरोंग वेस्ट एवन्यू 2। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन TPE टुवर्ड्स, अगर आप जा रहे हैं PIE आफ्टर इलियास रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन AYE टुवर्ड्स MCE बिटवीन बोनावस्ता एंड क्लेमेंटी एवन्यू 6। ये था इसका का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, तेरे नाल लव हो गया। अ वेरी अंडररेटेड, बड़ा क्यूट सा लव स्टोरी है इसका। एंड ओनली टाइम आई रियली लाइक द केमिस्ट्री बिटवीन जेनेलिया डिसूजा एंड हमारे रितेश देशमुख। यप, आतिफ असलम की आवाज, लेट्स गो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a musty partner event.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 AM to 6 PM. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
2: Before anything else, and I have to tell this, मतलब मेरे से रुका नहीं जा रहा है, रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ 8:41 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने कॉन्टेस्ट खेला था फॉर द डांडिया टिकट्स एंड आई प्लेड दिस इंट्रो ऑफ अ सॉन्ग। काफी सारे लोगों ने आई नो दैट सॉन्ग कैन बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट यू माइट वांट टू रीचेक एंड रीवैल्यूएट, एक बार याद करके देखो कि वेदर आपने सही जवाब दिया है कि नहीं, क्योंकि इतने सारे जवाबों में देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज करेक्ट, सो जस्ट इन केस ऐसा मैंने मुझे लगा क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूं ना। वेल, कमिंग टू हमारी अगली खबर जो सीधा सिनेमा की दुनिया से आ रही है, एंड सिनेमा में अब स्केल का मतलब भी काफी चेंज हो रहा है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर अतली की अपकमिंग फिल्म जो है राका, दैट हैज एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इवन बिफोर इट्स रिलीज। दैट इज करेक्ट। अब रिकॉर्ड क्या है, मोस्ट पीपल मोशन कैप्चर्ड इन रियल टाइम। एक सीक्वेंस के लिए 37 परफॉर्मर्स वर मोशन कैप्चर्ड साइमल्टेनियसली यूजिंग दिस मैसिव सेटअप ऑफ 92 कैमरास मुंबई में। बेसिकली 37 एक्टर्स वर परफॉर्मिंग टुगेदर, उनकी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस और फिजिकल परफॉर्मेंसेस को एक ही वक्त डिजिटली कैप्चर किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द अचीवमेंट एज वेल। बताओ बताओ, एंड मुझे नंबर से ज्यादा इसका प्रोसेस काफी फैसिनेटिंग लगा। सो मोशन कैप्चर वही टेक्नोलॉजी है जहां एक्टर्स बेसिकली एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, सेंसर्स और कैमरास उनकी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, एंड देन द परफॉर्मेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू दिस डिजिटली क्रिएटेड कैरेक्टर या फिर वर्ल्ड। सो जो इवेंचुअली स्क्रीन पे हमको दिखेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट लग सकता है, बट उसके नीचे underneath it there's still that human performance. So apparently this particular sequence involved performers across different age groups and makers jo hai have released behind the scene footage as well showing how elaborate pura setup tha. And Raka itself is being described as a very large scale sci-fi action film bringing together Allu Arjun and Atli. So expectations to वैसे ही sky high hain iske sath, but movie release hone se pehle hi kini certificate mein aa jana, I mean publicity department ne khud hi kaha hoga picture abhi baki hai aur record पहले आ गया है। 37 performers, 92 cameras, एक साथ simultaneous take, oh my god, it's quite a feat though. फिलहाल हम जो यहां कर रहे हैं, हमने भी मतलब जो रिकॉर्ड बनाया था दैट वाज क्वाइट अ फीट, कोई तोड़ तो पाया है नहीं, तो ऑब्वियसली वेरी गुड वेरी गुड। पैटिंग माय ओन बैक, कहीं आप इस अप्रेरी वुमन, देखो देखो ना ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गुड मॉर्निंग।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: छत पक्षियां रंगा दी धूप बरसाती सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया वो दोनों को ही चाहतो ना।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood come music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
1: Healthy, khao, protein, khao.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy, khao, protein, khao.
2: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
3: GG.
2: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GG Mart, your personal grocer.
2: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
4: By the way, अगर आप मिड ऑटम फेयर में जाते हैं जीजी मार्ट के कियोस्क नंबर 12 पर जाते हैं 25 सितंबर तक ही है नॉट मेनी डेज लेफ्ट व्हाट यू कैन गेट इज दिस स्पेशल डिस्काउंट बाय टू गेट वन फ्री जस्ट इस वाले रोड शो में यू कैन गेट दैट क्रिशिवल का कमाल का जो है रेंज वेलोसिटी नोवेना स्क्वायर में इन फ्रंट ऑफ KFC सो वेल अगर उस तरफ का मूड बन रहा है प्लान बन रहा है या फिर बना सकते हैं जरूर जाइए जीजी मार्ट के कियोस्क नंबर 12 पे ट्राई द क्रिशिवल नट्स का रेंज केमिकल फ्री है नेचुरल है आई मीन हलाल सर्टिफाइड भी है इन 167 कंट्रीज इंक्लूडिंग सिंगापुर बेस्ट इस टाइम पे फेस्टिव सीजन चल रहा है चाहे गिफ्टिंग के लिए यूज करिए फैमिली रियूनियंस एनीथिंग एंड अपने लिए भी लाइक जस्ट फॉर हेल्दी स्नैकिंग है ना मिलेगी वहां पे क्रिशिवल की रेंज मिलेगी जी मार्ट की क्रिशिवल की रेंज मिलेगी वेल इसी खूबसूरत नटी बात के बाद ये जो है गाना प्ले करते हैं और घंटे को करते हैं रैप अप भाई दो घंटे निकल गए ऐसा ही होता है जब किसी के साथ अच्छा वक्त स्पेंड कर रहे हो गुड मॉर्निंग

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, Surf Radio Masti, 24/7 Live Fan. टेक्नोलॉजी के फायदे अनेक हैं, लेकिन स्कैमर्स भी इंटेलिजेंट होते हुए जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतर आपके साथ 9 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं, 9:06 हो चुके हैं। भाई, सिंगापुर पुलिस जो है उन्होंने एक स्कैम के रीइमर्जेंस को लेकर फ्रेश वार्निंग इशू की है। एंड यस, इट माइट, अगर आपके साथ हुआ तो हो सकता है कि आप भी पैनिक मोड में चले जाए। सो इमेजिन यू आर कैजुअली ब्राउजिंग अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, एंड सडनली एक पॉपअप इट अपीयर्स फ्रॉम समवेयर with Singapore Police Force ka logo saying your device has been locked because you repeatedly accessed websites containing illegal content. Now then comes the scary bit. You have those outstanding fines, pay within the next few hours, ya fir aapka device will remain permanently locked and you could face a prosecution. And screen par काउंटडाउन टाइमर भी चलता है, बस वहीं पे प्रेशर क्रिएट करना कि जल्दी करो, अभी पेमेंट करो। बेसिकली प्लीज डू नॉट गेट इनटू इट, ये एक स्कैम है। सिंगापुर पुलिस जो है, दे हैव स्पेसिफिकली क्लैरिफाइड दैट दे डू नॉट रिमोटली लॉक आपका पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप एंड दे डू नॉट डिमांड पेमेंट ऑन पॉपअप अलर्ट्स। स्कैमर्स जो है आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट आपके बैंक कार्ड के डिटेल्स थ्रू दैट फेक पेमेंट का स्क्रीन, एंड सम विक्टिम्स रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड ओनली व्हेन अनऑथराइज्ड foreign currency ke transactions appeared on their cards, sometimes for amounts even higher than the fake fine they thought they were paying. Aur ek simple sa rule hamesha yaad rakhiye, sabse important to hai verify, but urgency plus fear, pay right now, stop, don't click on anything, don't enter your card details, don't click anything suspicious. If aapka browser seems frozen, earlier SPF guidance jo hai says you can force quit the browser using task manager, ya fir agar aap windows use karte ho to task manager use karo, or you can force quit on Mac. And if you are thinking ki yaar ye genuine hai ya scam hai, kaise pata chalega, do not guess, there are helpline numbers. I think 1799 hai idhar ka helpline number, just call them and check, verify. Especially अगर आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स है, फैमिली मेंबर्स है, इवन टीनेजर्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन जो है यू नीड टू शेयर। स्कैमर्स का सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स दैट वन मोमेंट ऑफ पैनिक। सो ऑलवेज वेरीफाई, चेक एंड देन एक्ट। बेटा आप भी यही गाना गाओगे जो विशाल मिश्रा गा रहे हैं इस अगले उसमें, या कैसे हुआ? Good morning.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: Gigi.
0: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: दिस नवरात्रि सीजन स्किप द ट्रेडमिल बिकॉज द बेस्ट काइंड ऑफ कार्डियो कम्स विद डांडिया स्टिक्स। वी इंडस्ट प्रेजेंट्स बॉलीवुड डांडिया नाइट। Where the colorful festive vibes meet Bollywood cup music, energetic dancing, good Indian food, and exciting surprises.
4: Suat!
3: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
5: 9:18 रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतराप के साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा। गुड मॉर्निंग एंड कंगना दीदी। आई थिंक कंगना दीदी लाइक्स बीइंग इन स्पॉटलाइट। अब वो इधर मूवीज में नहीं आ रही है या फिर उनकी मूवीज चल नहीं रही है, ईदर ऑफ देम, बट वो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है कि लोग उनकी बातें करने ही लगते हैं। एंड उनको वैसे भी हर चीज में बोलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप कहोगे कि अब क्या कह दिया उन्होंने, मैं बताती हूँ अब क्या कह दिया भाई। बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिबेट चल पड़ी है इसके चक्कर में, एंड दिस वन इज अबाउट माइथोलॉजी सिनेमा एंड उसका कॉस्ट्यूम डिजाइन। सो कंगना रनौत रिसेंटली शी शेयर्ड दिस क्लिप ऑफ दिस ओल्ड डिवोशनल फिल्म एंड क्वेश्चन्ड कि हाउ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड इन मॉडर्न मूवीज। उनका पॉइंट एसेंशियली था कि इतनी टेक्नोलॉजी VFX और CGI अवेलेबल होने के बाद भी why do characters in some recent mythology based films look according to her more like they belong in the contemporary television ke serials। उन्होंने ये भी argument दिया that the costume designers should pay closer attention to the descriptions in the shastras। अब इंटरनेट ने इमीडिएटली इसको कनेक्ट कर दिया कि ये वही है ना कि नितेश तिवारी की रामायण रणबीर कपूर वाली आने वाली है, वे उसी के बारे में बोल रही है। पथकंगना ने रामायण या रणबीर कपूर साई पल्लवी डायरेक्टर का नाम अपनी पोस्ट में नहीं लिया है, लेट मी बी क्लियर दैट वे। सो सेइंग शी डेफिनेटली अटैक्ड दिस फिल्म वुड बी जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है। इंटरेस्टिंगली रामायण इस मूवी का जो कॉस्ट्यूम हैव ऑलरेडी बीन अ डिबेट kind of online, particularly Sai Pallavi ke Sita aur Lara Dutta ke kai ke looks jo hain, costume designers Rimple and Harpreet Narula have actually explained apni thinking bhi. Unka kehna hai ki bhai is period ke kapdo ko ek single definitive visual reference uska kuch hai hi nahi. Different regions textiles and draping ke traditions hai, interpretations can vary. Their intention was to keep the costumes rooted in the Indian culture also while making them to work for the actors movement and the कैमरा एंड द स्केल ऑफ द ह्यूज सिनेमैटिक प्रोडक्शन, ये सारी चीजों के लिए। अब पता नहीं भाई, ये जो डिबेटे हैं ये बीच बीच में आती रहती है। और कमाल की बात ये है द बैंटर विच गोज ऑन। कंगना रनौत कोई एक चीज बोलती है कि मुझे नहीं समझ में आता है ये क्या ही कर रहे हैं सब, और उसी तरफ दूसरे लोग जो है वीडियोज अपलोड करने लग जाते हैं कि मैम आप ये कह तो रही हैं एंड यू आर एडवोकेटिंग फॉर दिस, बट फिर ये क्या है। सम कंगना रनौत वीडियो पॉप्स अप एंड दे शेयर ऑनलाइन कि ये कह रही हैं, बट शी हैज बीन देयर डन दैट, मतलब चल कह रहा है मैम, बट इट इज व्हाट इट इज। मन लगाए रखते हैं ये हम सभी का, ये सारी चीजें करते हुए, है ना। कंगना की मूवी से ही एक गाना, बट के की आवाज में आई लव दिस वन।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: ये गाना मेरी मम्मी का अल्टीमेट फेवरेट गाना है एंड शी सिंग्स इट सो ब्यूटिफुली, क्या ही बताओ मम। भाई हमें भी बैठे बैठे कभी कभी ऐसे याद आ जाती है, क्या ही करे। रेडियो बसी 947 पर 9:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। आइए आपको बताया जाए इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स MCE एट PIE एक्सप्रे का जो एंट्रेंस है वहां पर। व्हीकल ब्रेकडाउन बनेगा ऑन लॉनी हाईवे टुवर्ड क्वींसवे आफ्टर ब्रैडल रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 4। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी बिटवीन KPE एंड थॉमसन रोड। सो ये 10 घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट परिणीति चोपड़ा की आवाज में इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट सेज दैट माना के हम यार नहीं मगर उन्हीं को करने देते हैं ना, जिसको जो सूट करता है वो उसको करने देते हैं। यस गुड मॉर्निंग।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
3: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
4: क्या अपकमिंग शानदार वीकेंड होने वाला है भाई। प्लान आपके अभी से हम सेट कर सकते हैं। 26 को बैकस्टेज सिबलिंग से चले जाइए, भजन जैमिंग कर लीजिए और संडे को अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाइए माउंटबेटन सीसी आईएईसी, जो लेकर आए हैं फेस्टिव बाजार। भाई शॉपिंग भी, खाना भी एंड कम्युनिटी भी एकदम ऑल सेट, बच्चे भी सेट, क्योंकि सबसे पहले वही टेंशन होती है ना कि भाई उनको कौन संभालेगा। सो वेल, दिस इज ऑल रेडी। भाई संडे को कहां जाए, क्या करे, ये वाले डिस्कशंस अब करने का कोई वो नहीं है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक यू कैन डू सो सो वेरी इन मेनी थिंग्स, राइट। एंड ये हो रहा है कहां, माउंटबेटन सीसी मल्टीपर्पज हॉल में, तो याद जरूर रखें। बट याद जो है, याद से कुछ ऐसा याद आया कि कल बात की थी हमने दिस गाय हु रियली बॉडी शेम्ड कैटरीना कैफ हाल ही में, एंड ये जनाब जो है अब अपॉलजी जो है लेकर आए हैं। ये सबसे माफी मांग रहे हैं विद द जस्टिफिकेशन कि वो क्या है ना कि आई वाज बॉडी शेमिंग हर, वो मेरे रील का हुक था इस वीडियो के लिए। सो हुक बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स उसको बुलाते हैं कि एक एक रिपीटेड, मतलब ये वाला जो है कॉल टू एक्शन है, ये ही काम करेगा, ये मेरे वीडियो का हुक है। सो हिज हुक, मतलब इसका जस्टिफिकेशन इज एज बैड एज द वीडियो ही वांटेड टू से एंड बॉडी शेमिंग वाला, ये सारा चीज उन्होंने जो कैटरीना कैफ के साथ किया। व्हाई डिड ही अपोलोजाइज? बिकॉज सलमान खान जो है वो काफी नाराज हो गए और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काफी सारा उनको निंदा की, उनकी निंदा वेरी मच राइटली सो, एंड ही इज। एंड मजेदार बात बताओ क्या है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं ही पड़ता है, दो वो दिखा रहे हैं कि फर्क पड़ता है बट वो उनको फर्क नहीं ही पड़ता है। दिस गाय नाउ सेज भाई कैटरीना कैफ एंड सलमान खान तो हमारे फेवरेट हैं, हमेशा से फेवरेट रहे हैं, हैं? जल्दी नहीं याद आ गया सर, क्या कर रहे हो आप? बट एनीवेज कह रही हूं, है ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे रेडियो मस्ती 24/7 पर, हमारे पास भी है गाने बट अच्छे, इनके जैसे नहीं है।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GGMart, your personal grocer.
3: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a Masti Partner event.
5: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
6: हाँ जी हाँ जी, बस बातों बातों में कहा था ना, ये लीजिए 10 भी बजने को आए हैं। रेडियो मस्ती 24/7।

डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मेरा गला. भाई सुबह जब मिले थे ना, कहा था द डे विल बी जस्ट फाइन, एंड अभी तक फाइन ही चल रहा है, फाइन ही रहेगा. वैसे मॉर्निंग का भी अपना ही मैथमेटिक्स है, अलार्म बजता है तो लगता है 5 मिनट, और चाय मिलती है तो लगता है कि हाँ अब हम इंसान मोड में आ सकते हैं, और 10 बजते लगता है रियलिटी आ जाती है, अच्छा चलो काम भी कर लेते. देखो मैंने तो अपना कर लिया है बाय द वे, बट बिफोर आई फिलहाल यहाँ से निकलने का काम करती हूँ. हर चीज को इतना सीरियस मत लेना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ टाइम के साथ इररिलेवेंट हो जाती है, एंड कुछ के बारे में शाम को खुद ही सोच लेंगे कि मैं सुबह इतना क्यों ही टेंशन ले रही थी. सो ईट वेल, लाफ अ लिटिल मोर, काम भी कर लेना प्लीज. मेरी वजह से प्रोडक्टिविटी खराब हुई तो फिर बड़ा ही वैसा हो जाएगा, मुझे फील अच्छा नहीं आएगा. मैं अंतरा यहाँ पर, इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय. आपसे मुलाकात होगी शाम के टाइम पर वापस से, क्योंकि हमारा आज ट्यूसडे इवनिंग वाला शो है जी, मस्ती दिल से. एंड मेक श्योर दैट यू ट्यून इन. अभी 1 घंटे का ब्रेक आपका भी मेरा भी, उसके बाद जो है नुपुरवा आएगी हमारी मस्ती मॉर्निंग्स लेकर. तब तक के लिए हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर. आंद्रा इज साइनिंग ऑफ.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
3: चेक इट आउट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
3: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
2: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू,
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: noche.
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh
5: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: टक टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: काफी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, और उसके बाद मुझे पता चला है कि इस सवाल का जवाब झूठ देने में ही भलाई है। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा सवाल है यार, बताती हूँ यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नंबर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है, और वो सवाल है आप कैसे हो, क्या हाल चाल, जीवन कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपने इन सारी चीजों का जवाब पॉजिटिवली दे दिया कि सब बढ़िया चल रहा है, मजे का चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और बस उसके बाद देखना किसी की नजर लग जाती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है जो नहीं होना चाहिए था। सो डेफिनेटली इस सवाल का जवाब थोड़ा सा झूठ दे दिया करो, थोड़ा सा, मतलब दिल में तसल्ली रहेगी कि हमने अंदर की बात किसी को नहीं बताई और कुछ नहीं होने वाला है। वैसे नहीं होगा, ऊपर वाले की इच्छा रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झूठ बोल दिया करो, क्या जा रहा है आपका। चलिए ऑन दिस नोट मैं आरजे नंबर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है, और मुलाकात का सिलसिला ऐसे खाली हाथ तो आगे बढ़ नहीं सकता है। नहीं, मेरी गाड़ी का पेट्रोल जो है ना वो है गानों से और बहुत सारी बातों से। सो डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड मैं आरजे नंबर मस्ती मॉर्निंग शो पर लेकर आएगी कुछ और भी गॉसिप जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। डोंट गो एनीवेयर।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available, book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टकाटक
2: जोश में रहो।
3: जो सच है वो सच नहीं है और जो झूठ है वो सच हो सकता है और जो बहुत ज्यादा सच लग रहा है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओ भाई, अब थोड़ा रिस्की जोन जो है ना बढ़ता जा रहा है। अरे पॉपुलर लोगों के लिए तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है यार। उनको खुद अपनी वीडियो देखकर समझ में नहीं आता है कि ये इन्होंने एक्चुअली किया है या ये बनाया गया है। बिल्कुल, किसी के संग कुछ तो हो गया है और वो बहुत परेशान चल रहा है। सोनू निगम का पंगा हो गया है किसके साथ? सलमान भाई के साथ। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल सी हो गई और उसमें था कि सोनू निगम ने सलमान खान की सिंगिंग को ट्रोल किया है, उसका मजाक उड़ाया है। आपको याद होगा ना, उनकी मूवी आई थी मैं हूँ हीरो तेरा और इसका टाइटल सॉन्ग सलमान खान ने खुद ही गाया था और उसके बिहाइंड द सीन्स एंड स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के वीडियो भी डाले गए थे। राइट, इसी वीडियो को देखकर सलमान खान की सिंगिंग के ऊपर मजाक उड़ा रहा है कौन? सोनू निगम, जाने माने द प्लेबैक सिंगर। लेकिन इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। एक्चुअली वो वीडियो क्लिप कहीं और की है जिस पर सोनू निगम जी ने एक पाकिस्तानी सिंगर की सिंगिंग देखकर हंसी उड़ाई थी, लेकिन इसको सलमान खान के साथ जोड़कर बैठे बिठाए लड़ाई करवाने का पूरा प्लान कर लिया गया। तो भाई सोनू निगम ने इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल करके क्लैरिफिकेशन दे दिया है। भाई सलमान खान से कौन पंगा लेना चाहेगा, आप ना मैं ना कोई और। हाँ, समझा करो जरा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समझाने के लिए, रियलिटी बताने के लिए, इनसाइट्स बताने के लिए और गॉसिप्स बताने के लिए मैं हूं ना। आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना है। डेफिनेटली मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indras presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood Ka music, energetic dancing, good Indian food, and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12 11th टू 25th सितंबर शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
4: जीजी
3: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन gtmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
4: Gigi Mart, your personal grocer.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। यू नो वॉट, मैं अब अपनी लाइफ के उस स्टेज पर आ गई हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेरा ऐसा काम हो जाए जो कि अटका हुआ था। तो जब मैं लौटू वहां से ना, तो खाली हाथ नहीं लौटू। मेरा एक टास्क तो, एक बकेट लिस्ट तो टिक ऑफ हो ही जाए। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ ख्वाब चलता है, आप भी बिना वजह कहीं जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर से सिंगापुर में रहते रहते आप एक MRT पकड़ के जब जाते हैं तो उसके पीछे कोई खास मकसद होता है, तो बस आपके लिए ही एक प्लेस आई है जहाँ पे आपके बहुत सारे टास्क जो है ना वो टिक ऑफ किए जा सकते हैं। हाँ जी, सिंगापुर एक ऐसा दिन जिसमें आपके सारे फेस्टिव टास्क जो है ना वो टिक ऑफ हो सकते हैं, राइट। सिंगापुर में इस 27th सितंबर होने वाला है फेस्टिव बाजार 2026। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक माउंटबेटन सीसी मल्टीपर्पज हॉल में। अच्छा, यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह तो मिलेंगे ही मिलेंगे, शानदार वाले फेस्टिव वाले, फूड स्नैक्स होम डेकोर गिफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स लाइफस्टाइल फेस्टिव प्रोडक्ट्स, इवन बच्चों के लिए भी प्ले एरिया है तो आप उनको भी साथ में लेकर जा सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, तो आप प्रीमियम टेबल या स्टैंडर्ड टेबल भी पिक कर सकते हैं। प्रीमियम टेबल $100, स्टैंडर्ड टेबल $80 में आपको मिलेगी। इंक्वायरीज के लिए कॉल कीजिए 8330-2518 पर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ और भी ऐसी काम की बातें, मतलब आप खाली हाथ ना जा पाओ ऐसी वाली बातें अभी और लेकर आएगी। नहीं जाना नहीं मेरी जान।

सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव।

0: To the community, plus live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: अच्छा, आप जब कोई एक प्रोडक्ट पसंद करने पर आते हैं तो कितना वक्त लेते हैं? बताओ, हम लड़कियों का तो एवरेज आर है 2-3 hours। हाँ, मतलब इतना वक्त तो लगता है यार। मतलब रोज वाली चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशल चीजों की बात कर रही हूँ। ऊपर से जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस की या डायरेक्टर्स की कैटेगरी आती है ना, तब तो यार कम से कम 4-5 फिल्में लगती हैं मुझे। कि भाई जब तक इसकी 4-5 फिल्म्स मुझे लगातार पसंद नहीं आएगी ना, तब तक वो मेरी फेवरेट वाली लिस्ट में तो शामिल नहीं हो सकता, है ना? आपका भी कुछ तो उसूल होगा ना। जो भी आपका तरीका हो इन लोगों को पसंद करने का, आप मुझे भेज सकते हो 9151-8963 पर व्हाट्सएप या टेक्स्ट करके। अच्छा, अभी मैं बात कर रही हूँ, अच्छा लगता है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपस में ही लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अपने फेवरेट एक्टर्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सो अगर हम जाने माने पंजाबियों की शान दिलजीत दोसांझ की बात करें, तो इन्होंने खुलकर बताया है कि ये अपने जमाने के, शायद आपके और मेरे जमाने के भी, गोविंदा जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं कि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार अभी तक ना कोई हुआ है और ना होगा। मतलब इनके हिसाब से ये परफेक्ट थे, हैं और रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, गोविंदा जी की तारीफ उनकी फैमिली के अलावा पूरी दुनिया करती है यार, इसीलिए थोड़ा सा इम्प्रेशन चेंज होता जा रहा है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नंबर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

वो कहते हैं ना, जो चीज हमारे पास होती है ना, हम तब तो उसकी वैल्यू करते नहीं है, और वो चीज जैसी थोड़ी सी दूर जाती है ना, हम वैल्यू करने लगते हैं। हाँ, मतलब छोटा सा एग्जांपल ले लो भाई, ट्रेन की बुकिंग करा ली है, ठीक है, टिकट्स हमारे हाथों में, हम वैल्यू नहीं करते, और जैसे ही वो ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है और वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है कि यार अब क्या होगा, क्यों चली गई, बहुत दुख हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ये चीजें ना हम बहुत ज्यादा सोच सोच के परेशान भी होते हैं। हाँ, मतलब छोटी सी चीटी बराबर चीज की वैल्यू तो तब समझी जाएगी जब साड़ी पहनते वक्त हम लड़कियों को ना सेफ्टी पिन नहीं मिलती। हाँ, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, एंड छोटी सी लेकर बड़ी बातें हम डेफिनेटली यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम शाहरुख खान की एक छोटी बात की बात करें तो वो अब बहुत बड़ी हो चुकी है। देखो, अपकमिंग मूवी इनकी किंग नाम की आने वाली है, जो कि एक अलग लेवल पर एक्शन मूवी होगी ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें छोटी सी चीज ये है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अरिजीत सिंह के गाने आने वाले हैं इनकी मूवी में, और इन्होंने खुद अरिजीत को मिस्टर परफेक्ट कहा है म्यूजिक इंडस्ट्री का। और अरिजीत सिंह का तो आप जानते ही हैं, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया था बॉलीवुड से, लेकिन फिर भी वो शाहरुख खान के लिए गाना गा रहे हैं, और इस मूवी का हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाए, राइट? एनीवेज, ठीक है, ये छोटी सी गुड न्यूज हमारे लिए बहुत है यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ऐसे ही बहुत से लेकर कम कम बातें भी करती रहूंगी मेरी जान। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: आपने जब अच्छे काम किए होते हैं ना तो आप किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन जैसे ही आप छोटे मोटे उल्टे सीधे नंबर दो वाले काम करने लगते हैं ना तब आपको पूरी दुनिया से डर लगता है। मतलब तब ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन लेट मी टेल यू, सिर्फ नंबर दो के काम करके ही डर नहीं लगता है, लेकिन आजकल जो सीक्रेट सरप्राइजेस प्लान होते हैं ना वो करके भी बहुत डर लगता है कि कहीं ये सीक्रेट खुल गया तो। हाँ, एंड डेफिनेटली ये हमें किसी और ने नहीं सिखाया है, ये बॉलीवुड हमें सिखा रहा है कि सुनो सुनो सुनो, सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो, अदरवाइज मजा नहीं आएगा यार। एनीवेज, आज से कुछ सालों पहले की बात करें, 2014 इटली में बहुत ही सीक्रेट तरीके से डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा एंड रानी मुखर्जी ने शादी कर ली थी, सिर्फ 13-15 गेस्ट के साथ, 13-15 गेस्ट के साथ लिटरली। सो आदित्य चोपड़ा को इतना धक-धक हो रहा था, इतना डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रोन भेजकर उनकी शादी का शूट ना कर ले, कोई डिटेक्टिव आकर उनकी पिक्चर्स ना क्लिक कर ले, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और ये सारी बातें रानी मुखर्जी के लहंगा डिजाइन करने वाले सभ्यसाची ने जो है ना वो खुलकर बताई है। तो डर तो लगता है जब आप कोई सीक्रेट काम कर रहे होते हो। हाँ, एनीवेज, आपको कभी डर लगा है कोई सीक्रेट चीज प्लान करने में, तो जरूर बताना मेरी जान ऐप पर कमेंट कर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching?
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: Gigi.
0: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
4: It's a must-be partner event.
5: आंखें खुली हो या

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: ऐसा अक्सर कह दिया जाता है कि सुनो, इस एक्टर ने उसको धोखा दिया, उस एक्टर ने इसको धोखा दिया। इवन लोगों की लाइफ में किसी तीसरे की वजह से बहुत ज्यादा धोखेबाजी की रिपोर्ट्स आ ही जाती है। बट द पॉइंट इज कि और कहां कहां धोखा हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों में धोखा होता है। हम ऑनलाइन कुछ और सोच के ऑर्डर करते हैं और कुछ और आ जाता है। घर में आने वाले कारपेंटर भैया वो बोल देते हैं आ रहे हैं और बस फोन करके बोल देते हैं कि मैडम आज ना हो पाएगा। उनसे भी धोखा हो ही जाता है। हाँ, जब हम बाहर कोई बढ़िया सी डिश ऑर्डर करते हैं, उसकी फोटो बहुत ही शानदार होती है, लेकिन जब वो आती है तो उसका टेस्ट कुछ और होता है, उसकी शक्ल कुछ और होती है, वहां धोखा हो जाता है। तो धोखा कहाँ कहाँ नहीं होता है मेरी जान। हाँ, सो इस वर्ड का इस्तेमाल मतलब सिर्फ एकाध ही जगह सबसे ज्यादा किया जा रहा है। बाय द वे, बॉलीवुड में रिलेशनशिप के धोखे से ज्यादा एक्टर्स के रिप्लेसमेंट के धोखे भी निकल कर आए हैं। बताती हूँ, आपने कुछ साल पहले स्वदेश मूवी देखी थी। हाँ, वही वाली, ये तारा वो तारा, ये तारा या हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। राइट, एक ऐसा साइंटिस्ट जो फॉरेन की दुनिया छोड़कर अपने नेटिव विलेज आके बस जाता है, क्योंकि उसके मन में उनके लिए फिक्र होती है, चिंता होती है, डेवलपमेंट होता है। एनीवेज, इस मूवी में आपने शाहरुख खान को देखा मोहन भार्गव के रोल में, राइट? लेकिन आपको पता है, इससे पहले आमिर खान को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन आमिर खान ने ये मूवी अचानक से करने से मना कर दी। फिर आर माधवन से भी इसका ऑडिशन करवाया गया था और वो बहुत ही शानदार हुआ था। हाँ, और बिना उनको कोई रीजन बताए शाहरुख खान को इस मूवी में ले लिया गया। तो धोखा तो यहाँ भी हुआ था, पर ठीक है, आपको आज पता चला है, कुछ लोगों को सालों साल पहले पता चल गया था। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: वो जमाने गए जब आप किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर बुक करो और आप अपने पार्टनर को वहां जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करवा के कहो, देखा ना तुम्हारे लिए क्या शानदार सरप्राइज रखा था मैंने। हाँ देखो, ये टाइम इसलिए गया बिकॉज आजकल थोड़ा तरीका अलग हो चुका है यार, और आप अलग तरह से किसी को सरप्राइज नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, अगर आपको और आपके पार्टनर को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है तभी आप हमें भी सुन रहे होंगे, राइट? और ऐसे में सूफी अंदाज, एक शानदार रोमांटिक वातावरण बहुत ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली सिंगापुर में एक ऐसी सोलफुल शाम आने वाली है। परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंट्स इश्क सूफियाना बाय अमित धामेलिया। हाँ जी, एक ऐसा नाम जिसके शोज हाउसफुल जाते हैं। सो डेफिनेटली 26th of September सैटरडे वाला दिन है, 7 to 9 PM ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टेसनसन 60 टेसनसन रोड सिंगापुर। आप अपने टिकट $60 and $80 में बुक करवा सकते हैं। कॉल कीजिए 8138-2790 पर, क्योंकि ये शाम आए हाय बहुत ही अलग होने वाली है। इश्क सूफियाना शो, मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर ऐसे ही अलग बातें लेकर आती रहेगी। सुनो एनीवे।

0: डू यू बिलीव जब किसी की याद आती है तो आपको हिकअप्स यानी हिचकियां आती है? देखो, इस थॉट पर आप बिलीव करें या ना करें, आप मानते तो है यार, आपको ऐसा लगता है कि हिचकियां आनी शुरू हुई, कोई ना कोई तो याद कर रहा है यार, कौन है बता दो प्लीज ना, कॉल कर लो, मैसेज कर लो या मुझे अपनी जगह बुला लो। लेकिन ये इरिटेटिंग फैक्टर अगर हमारे आसपास आ जाता है ना, तो काम से मन लगना रुक सा जाता है यार। एक्चुअली थोड़ी देर पहले मुझे बड़ी हिचकी आ रही थी, इसलिए मुझे ये थॉट आया। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, ये हिचकियों वाला कॉन्सेप्ट तो डेली लाइफ में चलता ही रहता है, लेकिन जब आप अपने बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं तो आप बहुत फ्रूटफुल डिसीजंस ले लेते हैं। रिसेंटली वन ऑफ द सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, इन्होंने अपने फादर साहब को याद करते हुए एक खूबसूरत सा डिसीजन लिया है। हाँ जी, अयोध्या जैसी राम नगरी में, पवित्र नगरी में, इन्होंने ऑलरेडी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी तो तभी ले ली थी जब राम मंदिर ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, ठीक है। अब उसी लैंड पर ये एक धर्मशाला बनाने वाले हैं, 20 रूम्स अकोमोडेशंस के साथ, अपने फादर के नाम पर, उनकी याद में। क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। एनीवेज, अमिताभ बच्चन खूबसूरत काम करते ही रहते हैं और हमें इम्प्रेस करते ही रहते हैं। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, मेरी जान, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: Saturday night ka plan? Party, concert ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a Masti Partner event.

अच्छा जी, बात ये है कि लोग ना जेलस फील कर जाते हैं जैसे ही कोई लड़की एंट्री लेती है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है ना, तो लोग थोड़ा जेलस फील कर ही जाते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड ऐसा हुआ है ना पिछले 17-18 सालों में कि कोई लड़की आई और आपकी नजर घूमी और आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या पहना है, क्या अंदाज है, बढ़िया लग रहा है, मतलब मजा ही आ गया, ऐसी वाली फीलिंग आती है ना। हाँ। नहीं आती होगी तो भी आ जाएगी मेरे कहने पर। एनीवेज, ऐसी बड़े बड़े मेल एक्टर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स को भी आती है जब लोगों का ध्यान जो है ना वो फीमेल एक्टर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी, जाने माने प्लेबैक सिंगर जो है सुखविंदर सिंह, हाँ जी, उनके बहुत सारे गाने चक दे इंडिया से लेकर पंजाबी ट्रैक्स तक आपको बहुत ज्यादा पसंद है। सो एक बार ये एक वेन्यू पर थे और ये टाइम से पहुंच गए थे, ठीक है, तो मीडिया इनसे बात कर रही थी। फिर काफी लेट होने के बाद जब प्रियंका चोपड़ा आई तो सारा का सारा ध्यान जो है ना वो प्रियंका चोपड़ा पे चला गया, जबकि वो लेट भी आई थी। तो इस बात से इन्हें बड़ा हर्ट हुआ और इन्होंने तुरंत वो इवेंट छोड़ा और अपनी जगह चले गए। मतलब ऐसा हो जाता है, ईगो पे लग जाती है यार, समझा करो मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ। एंड डेफिनेटली आपके ईगो को सेटिस्फाई करते हुए या फिर आपको एंटरटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

बाय द वे, ये जो सिबलिंग्स लव है ना, ये रक्षाबंधन और भाई दूज ऐसे कुछ चुनिंदा त्योहार है उनमें तो सोशल मीडिया पे निकल कर आ जाता है, लेकिन बाकी टाइम क्या लड़ाई बहुत होती है भाई साहब। हाँ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कैसे भाई बहन है जो अपनी आर्ट एक साथ एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने बाकी सारी चीजें साइडलाइन कर दी है, राइट। इंडियाज फर्स्ट ड्यूओ सिंगर जो कि भजन जैमिंग करते हैं, हाँ जी, वो सिबलिंग्स अपना शो लेकर आ रहे हैं जिनका नाम है प्राची एंड राघव। शो का नाम है बैक स्टेज सिबलिंग्स, हाँ जी। 26th of September को लास्ट मौका है ये, आप अपने टिकट्स बुक करा के पहुंच सकते हो। वेन्यू है एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर, एंड सिस्टिक सिंगापुर पे टिकट्स अवेलेबल है। एक ऐसी शाम जिसमें भजन जैमिंग होगी, डिवाइन एम्बियंस होगा, प्योर सात्विक कुजीन होगा, एंड आप एंटरटेन हो जाओगे मेरी जान। फैमिली शो है तो अच्छी बात यह है कि आप सबको लेकर जा सकते हो, बहुत रेयरली ये चांस सिंगापुर में आता है, राइट। सो वेन्यू है एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर, सिस्टिक सिंगापुर पे टिकट्स अवेलेबल है। सो ये भजन जैमिंग आप एंजॉय करोगे, लेकिन आप डिस्काउंट भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 10% ऑफ मिल रहा है आपको स्टैंडर्ड टिकट्स पे, एंड जब चेकिंग होगी तो आपको अपना आईडी प्रूफ या रैंडमली वो सब चीजें शोकेस करनी होगी। अगर आप फुल फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो बाय 4 गेट 2 टिकट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड जी आपको 6 टिकट्स 316.02 सिंगापुर डॉलर में मिल जाएगी। सो आप 6 टिकट्स पर ट्रांजेक्शन जरूर ले सकते हैं। मैं आज नुपुर आपके साथ कुछ और भी डिटेल्स बताएगी ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. Hello! Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती।

क्यों नहीं ले सकते? जरा ये बताओ, जब लोहा गर्म होता है ना, तब ही उसके ऊपर और पीटना चाहिए ताकि वो शेप ले ले। मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली राइटर डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी, इनकी मूवी हनुमान अंश, जिसमें इंडिया के हिमाचल साइड के जो एक महाराज है, नीम करोली बाबा आप कह सकते हैं, उनकी खुद की कहानी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। मतलब मूवी ने 110 टाइम से भी ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया है और अभी भी कर रही है। तो इन्होंने अब सोच लिया है कि थोड़ा सा सात्विक लाइन पकड़ के अगला प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया जाए। और इस बार महाकवि जो रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राइट, उनके लाइफ के ऊपर भी कहानी लिखी जा सकती है और दिखाई जा सकती है। एंड उसका जो एक टीजर होगा या उसका नाम होगा, वो होगा राम बोला। तुलसीदास जी, जिनके लाइफ के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। मैं आज इन्हों पर बताना चाहेगी कि जानने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी हलचल है जो इंडस्ट्री में चल रही है, लेकिन आज के लिए भाई साहब इतना ही। हाँ जी, मुलाकात होगी अब कल। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

नाम मनी बेन, शकुंतला कांता की बड़ी बेन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live.

0: काल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले है।
3: जोश में रहो।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
3: चेक इट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5.

0: 90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो।
1: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Ramma. Mosty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style. Renuka! Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज.
4: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत.
5: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़.
6: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
7: मेरे करण अर्जुन आएंगे.
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे. फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट.
3: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: लर्निंग टू से नो इज इम्पोर्टेंट, बट Perhaps even more important is learning when to say it. Hello, hi, welcome in Namaste. Dear Masti Dil Se par aap sabhi ka swagat hai. Main aapki Antra aapke saath aur aaj ki shuruaat no se karte hain. Ek chhota sa word but bolne mein kitni mushkil hoti hai na. Yaar ek favor kar doge? Dil kehta hai no, dimag kehta hai no. But zuban kehti hai, haan haan, batao na, kya karna hai? एंड देन पूरा काम करते हुए अंदर से यही दिल कहता है कि भाई हाँ क्यों बोला, नो क्यों नहीं बोला। हम यही सुनते हैं अक्सर, दैट लर्न टू से नो, सेट बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट योर पीस, एंड एब्सोल्यूटली। बट आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट है ये समझना कि नो कब कहना है, बिकॉज हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन बाउंड्री वायलेशन नहीं होती। हर बार किसी के लिए एडजस्ट करना पीपल प्लीजिंग नहीं होता। समटाइम्स रिलेशनशिप्स डू नीड कॉम्प्रोमाइज, समटाइम्स पीपल वी लव डू नीड अस टू स्ट्रेच अ लिटल, एंड समटाइम्स वही हाँ हम बार बार बोलते रहते हैं अंटिल इट टर्न्स इनटू रिजेंटमेंट। सो कैसे पता करें? मे बी बिफोर सेइंग यस पॉज एंड एक बार अपने आप से वापस से पूछ ले कि मैं ये कर रही हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू, या बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ व्हाट विल हैपन इफ आई से नो। बस यही सारी बातें और एक इंट्रोस्पेक्शन जो है हम करते हैं यहाँ पर डियर मस्ती दिल से पर। दिस इज द स्पेस एग्जैक्टली फॉर दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, फैमिली, वर्क, वो सिचुएशंस जहाँ आंसर ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। यहाँ कोई नाम नहीं, कोई जजमेंट नहीं, आप हमारे लिए सिंपली डियर लिसनर और आपके लिए हम डियर मस्ती। व्हाट्सएप से आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं 9151896। आज भी कुछ चिट्ठियां पढ़ेंगे, कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे और मे भी कहीं बीच में हम सब ये थोड़ा बेटर समझ पाए कि कब हाँ किसी रिलेशनशिप को नर्चर करती है और कब नो खुद के साथ रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है। सो जो दिल में है कह दीजिए अगर आपको कहना है। यह डियर मस्ती दिल से स्टार्ट्स राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
2: Suat.
1: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
4: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12 11th टू 25th सितंबर. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
5: जीजी
4: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस.
5: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से, रेडियो मस्ती 24/7 पर हमारा वो खास शो जहां पर हम स्ट्रेंजर जरूर हैं लेकिन आपके वो दोस्त हैं जो सिर्फ आपकी चिट्ठियां और आपके दिल की बात सुनने के लिए बिल्कुल यहां पर तैयार हैं। मैं हूं आपकी आंसरा यहां पे आपके साथ, और अगली ये जो मेरे पास चिट्ठी है एक रिलेशनशिप को लेकर है, बट इंटरेस्टिंगली प्रॉब्लम शायद आर्ग्यूमेंट किस बात पर हुआ वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि आर्ग्यूमेंट करते कैसे हैं। यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई रीड द लेटर फॉर यू। सुनिए, डियर मस्ती, व्हेनेवर माय वाइफ एंड आई आर्ग्यू, आई नीड सम टाइम अलोन बिफोर टॉकिंग अगेन अबाउट इट। शी वांट्स टू सॉल्व एवरीथिंग इमीडिएटली। इफ आई वॉक अवे शी फील्स अबैंडन्ड। इफ शी कीप्स टॉकिंग आई फील कॉर्नर्ड एंड से थिंग्स आई रिग्रेट लेटर। How do two people resolve conflict when even their way of fighting is different? Very nice question actually. So ये बहुत ही relatable सा situation आपको नहीं लग रहा है? हम कहते हैं ना opposites attract, है ना? And हो गया attract, अब argument कौन solve करेगा? But seriously, हम सब कितने डिफरेंट है ना, हर कोई, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किसी को गुस्सा आए तो दे नीड टू टॉक इट आउट इमीडिएटली, नहीं कि आज ही अभी बात खत्म करो, मुझे अनरिजॉल्व छोड़कर मत जाओ। और दूसरा पर्सन एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली दोनों अपने हिसाब से रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वन पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक बिकॉज डिस्टेंस फील्स स्कैरी, द अदर वॉन्ट्स डिस्टेंस बिकॉज टॉकिंग इन दैट मोमेंट फील्स डेंजरस। हमने ये अपने घरों में भी देखा होगा, पेरेंट्स को ही देख लीजिए, मेरे पेरेंट्स की भी अपनी पर्सनैलिटी, इतनी सारी डिफरेंसेस हमेशा से ही थी, एक सिचुएशन पे दोनों का रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता था। एंड ग्रोइंग अप हम सब अनकॉन्शियसली ये सब ऑब्जर्व भी करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल होता है, कौन चुप हो जाता है, कौन इमीडिएटली बात करता है, कौन थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है। देन वी एंटर आवर ओन रिलेशनशिप्स कैरिंग आवर ओन पर्सनैलिटी, हमारी खुद की हैबिट्स और इमोशनल वायरिंग, एंड सामने वाला अपना पूरा सूटकेस लेकर आता है। सो मे बी दिस इज नॉट सिंपली हु इज हैंडलिंग द आर्ग्यूमेंट करेक्टली, मे बी द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू टू डिफरेंट पीपल क्रिएट अ वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट दैट फील्स सेफ फॉर बोथ। बिकॉज डियर लिसनर, अगर आपको स्पेस चाहिए और उन्हें रीअश्योरेंस, क्या एक को गिव अप करना पड़ेगा या कोई मिडल ग्राउंड हो सकता है? I am not going to answer this just yet. Let me come back and tell you what I think both of you. मैं कैसे देखती हूँ, बेसिकली मेरा POV इस बात को लेकर क्या है? So stay with me. ये है Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू मस्ती मीडिया नेटवर्क पर रेडियो मस्ती 24/7 और उसका ये बहुत ही खास शो डियर मस्ती दिल से। मैं हूँ आपकी अंशरा और अभी बस ब्रेक से पहले हमारे डियर लिसनर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। Whenever he and his wife उनकी argument होती, he needs space and she needs to talk it out immediately. वो walk away करे तो wife को लगता है she is being abandoned. Wife बात करती रहे तो he feels cornered and sometimes says things which he later regrets. So सवाल था कि when even our way of fighting is so different, conflict resolve कैसे करे? My dear listener, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है दैट नीदर ऑफ यू इज नेसेसरीली डूइंग इट रॉन्ग। आपका मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मे एक्चुअली मीन आई वॉन्ट टू काम डाउन फर्स्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू अननेसेसरीली, बट उन्हें वो शायद नहीं समझ में आ रहा है। यू डोंट मैटर इनफ फॉर मी टू स्टे एंड टॉक, मे बी लाइक समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली उनका भी अभी बात करो परहैप्स मीन्स दैट प्लीज रीअश्योर मी दैट वी आर ओके, बट आपको वो फील होता है कि यू आर नॉट गिविंग मी स्पेस टू ब्रीद। सेम आर्ग्यूमेंट, कंप्लीट डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट फाइट के बीच में अगर हम सिस्टम डिसाइड ना करें तो मे बी एक रूल बना लें, व्हेन बोथ ऑफ यू आर ओके, यू कुड से दैट व्हेन थिंग्स गेट रियली हीटेड आई नीड सम टाइम टू काम डाउन, आई एम नॉट लीविंग द कॉन्वर्सेशन या फिर और यू, गिव मी 30 मिनट्स एंड आई प्रोमिस वी विल टॉक अबाउट इट लेटर अगेन। एंड यू नो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जब आप किसी को रिटर्न टाइम देते हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाद में बात करेंगे और आई प्रॉमिस जरूर करेंगे, उस टाइम पे शायद रिजेक्शन जैसा फील हो बट इट फील्स वेरी डिफरेंट व्हेन समवन सेज यस वी विल टॉक अबाउट इट, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रीअश्योरेंस बिकॉज नाउ वन पर्सन गेट्स द स्पेस द अदर गेट्स द रीअश्योरेंस। सो डियर लिसनर, तो ये आपकी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। इफ यू से यू विल कम बैक इन 30 मिनट्स या व्हाटएवर टाइम यू हैव सेड, मेक श्योर दैट यू कम बैक। स्पेस कैन नॉट बिकम एन एक्सक्यूज टू अवॉइड डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस एंड योर वाइफ ऑल्सो हैज टू रिस्पेक्ट द पॉज विदाउट फॉलोइंग यू फ्रॉम रूम टू रूम कंटिन्यूइंग द आर्ग्यूमेंट। सो मे बी इवन क्रिएट एक सेंटेंस दैट मीन्स पॉज एंड नॉट गुड बाय, वी आर ओके, आई जस्ट नीड टू calm down and you know I will come back. So sometimes jo conflict hota hai is not about finding kiska style correct hai, it's about learning how to translate aapka apna style for the person you love, because ek acha relationship doesn't mean two people fight the same way, it always eventually means that they will learn how to fight without making each other feel unsafe. I hope कभी कभी मुझे ऐसा सच में लगता है एंड मैं ऑनेस्टली अपनी दिल की बात बता रही हूँ कि इतनी सारी जब हम यहाँ पे बातें करते हैं ना, काश ये समझदारी वाली बातें जो है हम अपने लाइफ के सिचुएशंस में भी यूं ही अप्लाई करें जैसे कि हम अपने पर्सपेक्टिव में बताते हैं। ये है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आई रियली होप दिस हेल्प्स।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: Raaz ki baat batau, meri awaaz kabhi achhi thi hi nahi.
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: काश ऐसा हो पाता कि आप अपने पुराने दिनों में वापस जा पाते। काश उसका एक हैवी अमाउंट हमें बता दिया जाता तो हम सब ट्राई करते, बट प्रैक्टिकली जो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको सोचकर क्यों इतना ज्यादा परेशान होना। डियर मस्ती दिल से शो, मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि जो पॉइंट है ही नहीं उस पॉइंट के बारे में क्यों सोचना, बात का पतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल मेरे हाथों में जो लेटर आया है उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और ऐसा करते करते मुझे 8 साल हो चुके हैं, बट आई मिस माई ओल्ड गोल्डन डेज जब मैं अकेले ही रहती थी, अकेले अपने हिसाब से जीती थी, मेरे पास सब कुछ था और मेरा सबसे बढ़िया टाइम तभी निकल कर गया था। और इस बात को मैं हर रोज कोसने लगी हूँ और इसका गुस्सा सब पर निकालने लगी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे पता क्या बोल रही हूँ, आप ना दोनों ही वक्त का चार्म जो है ना वो मिस कर रही हैं। डेफिनेटली आज आप लाइफ के जिस फेज में हैं उस फेज में भी बहुत खूबसूरत पल होंगे, लेकिन आप पुरानी बातों को याद करके उन फेजेस को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बिकॉज आपको प्रैक्टिकली ये तो पता है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, पुराने दिन नहीं आ सकते, और ऐसे में पुराने दिनों को सोच सोच कर आप अपने आप को और ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे हो। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है अब उसके बारे में सोचना कैसा?

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूं आपकी आंत्रा यहां आपके साथ, और सीधा अगली चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं। और उसमें एक वर्ड जो है ऐसा मैंने पढ़ा जो फैमिलीज में बहुत कभी कभी कैजुअली यूज कर लिया जाता है, एडजस्ट। तो एडजस्ट कर लेना, अरे तेरे लिए तो आसान है, अरे उसकी सिचुएशन को समझ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर भी लेते हैं, बट व्हाट हैपेंस व्हेन एडजस्टमेंट स्लोली बिकम्स एक्सपेक्टेशन। चिट्ठी पढ़े। डियर मस्ती, माय सिस्टर हैज टू यंग चिल्ड्रन एंड आई हैव नन, एंड बिकॉज आई डोंट हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज द फैमिली ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट मी टू एडजस्ट अराउंड हर। डिनर के टाइमिंग्स हो, हॉलीडेज, फैमिली प्लान्स, इट्स यूजुअली कि यार तुम एडजस्ट कर लो ना, तेरे लिए आसान है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ओके विद इट, बट रिसेंटली आई सेड नो टू चेंजिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मी एंड एवरीवन बिहेव्ड लाइक आई वाज बीइंग डिफिकल्ट। जस्ट बिकॉज एडजस्टिंग इज इजियर फॉर समवन, डज दैट मीन दे शुड ऑलवेज बी द वन एक्सपेक्टेड टू डू इट? माय डियर लिस्टनर, आई थिंक a lot of people including me will connect with this even if their situation is completely different, because families mein roles quietly na ban jate hain. Iske chote bacche hain, isko flexibility chahiye, iske hisab se kar lo, iski job demanding hai, isko disturb mat karo, ye paas mein rehta hai, ye kar lega, ye easy going hai, ye to adjust kar hi lega. And maybe initially aapne genuinely happily adjust bhi kiya. You understood your sister's situation. You love her children, obviously. You knew practically it was easier for you. But somewhere along the way, perhaps, aapki choice became everyone's assumption. And that's where feelings changed. Because there's a difference between someone asking ki, would you mind adjusting this time? And telling you, obviously, ki adjust to tumhe karna padega. And phir jis din aapne finally kaha ki is baar I cannot, suddenly you are difficult. And I think that's the emotion underneath this letter. Maybe you are not even angry about adjusting. Maybe aap just hurt ho that all the time, main hi kyun? Meri zindagi kya bilkul invisible si ho gayi hai baaki sabke liye? But there's another side too. Your sister genuinely does have constraints that you may not have. So how do families balance practicality and fairness? And when should we happily adjust for people jinse hum pyar karte hain? When it is okay to say I understand teri situation, but this time mera wala bhi matter karta hai. I want to give it some thought. Let me come back and tell you about my perspective, how I see this situation on Radio Masti 24/7. Aap sun rahe hain Dear Masti Dil Se.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। वेल, मैं हूं आपकी अंतरा आपके साथ। एंड ब्रेक से पहले हमारे डियर लिसनर की सिचुएशन थी कि उनके सिस्टर और उनके दो यंग बच्चे हैं, सो फैमिली प्लान्स में मोस्टली उनसे एडजस्ट करने की एक्सपेक्टेशन होती है। डिनर टाइमिंग चेंज करो, हॉलीडे प्लान चेंज करो, तू एडजस्ट कर ले, तेरे लिए ईजियर है। एंड मोस्टली शी हैप्पीली डज दैट, बट रिसेंटली समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड हमारे डियर लिसनर ने कहा कि इस बार नहीं कर पाऊंगी, एंड एवरीवन फेल्ट दैट शी वाज बीइंग डिफिकल्ट। तो सवाल था कि जस्ट बिकॉज एडजस्टिंग इज इजियर फॉर समवन, शुड दे ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड टू डू इट। माय डियर लिसनर, मेरे लिए आंसर है नो, बट that doesn't mean ki adjustment itself is unfair. Your sister has young children, obviously unki life mein restrictions zyada hongi, bedtime, school, meals, bachcho ke saath bas ready ho jao, nikalte hain, utna simple hota nahi hai. So yes, sometimes practicality says ki aap adjust kar lo, but practicality should not come or become a permanent rule that says ki aapka time less important hai, because your life is more flexible. And that's, I think, where the difference is. I think problem adjustment में नहीं है, problem assumption में है कि अगर कोई कहता है, I know you usually adjust for us, but would you mind doing this time too? Somehow you feel seen, right? But जब कोई कहता है ना कि यार तुझे ही adjust करना चाहिए, तू ही adjust कर ले every single time, eventually आपकी खुद की generosity जो है starts feeling like a duty. So next time, गिल्ट में बस बोलने के बजाय सिंपली से कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट्स डिफिकल्ट फॉर हर, मोस्ट टाइम्स आई एम हैप्पी टू वर्क अराउंड इट, बट दिस पर्टिकुलर प्लान इज इंपॉर्टेंट टू मी, सो दिस टाइम आई कैन नॉट चेंज इट, सॉरी। आई थिंक दैट्स व्हाट यू डिड, राइट? कोई आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई लिस्ट नहीं दी। And equally, don't turn this into keeping the score as well. Family relationships can't work on ki last time mein or this time mein tum karo. Sometimes one person genuinely will adjust more because circumstances us hisab se ho jati hain. But the difference should be that unki flexibility is appreciated and not taken for granted. Ye meri feeling hai iske bare mein. I don't know how you feel about it after listening to my perspective. Sometimes love says it's easier for me, so I will adjust. And sometimes love should also be able to hear, not this time. Yeah, without turning it into a problem. Hope this helps. This is Dear Musti, they'll say on Radio Musti 24/7.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
0: टाइम टू रेज द बार। Mosti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Renuka! Renuka!
3: Oh, oh, oh my darling! Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG Rockstar Renuka, with the week's top chart busters. Josh Mehra!
4: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना।
5: रंग दे
4: दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
5: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वो लोग जो दिल की बात जुबा पर ले आते हैं ना, ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली दिल की बातें जुबा तक आए ना आए, लेकिन हमारे पास आपके लेटर के थ्रू जरूर आ जाती है। एवरी ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स हम सभी आरजेस अनोनिमस वे से आपके लेटर्स पढ़ते हैं और आप तक जवाब भेजते हैं। खैर, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से, मुझे जो मेरा पार्टनर मिला है ही इज वेरी वेरी वेरी गुड, लेकिन वो कहते हैं ना चांद में भी दाग होता है, तो मेरे पार्टनर में ये दाग है कि वो बिना बताए मुझसे मतलब नाराज हो जाता है और थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगने लगती है, तो मैं और ज्यादा सवाल पूछने लगती हूँ और हमारी लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट सा है, वो कुछ चीजें पजल की तरह इनके रिश्ते में सॉल्व करना रह गई है, तो क्या करना चाहिए? जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में एक छोटा सा पॉज ढूंढना है। यू नो व्हाट, मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, इसलिए नाराज नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बात का बुरा लगता है, उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, फिर तीसरी बात उनके मन में आ रही होती है और सब कुछ पजल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाते हैं ना, उन्हें उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उनको थोड़ी सी स्पेस दे दो, और थोड़ी देर बाद ही एक जेन्युइन केयर दिखाते हुए कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी कुछ तो बनाकर दे दो और उस तरीके से उस बहाने से बात करना शुरू कर दो। आई बेट यू ऐसे लोग ना देखते ही देखते पिघल जाते हैं बॉस, और आपको लगेगा कि वाओ आरजी नुपुर का जवाब तो यही होगा इस सिचुएशन पे, पर हाँ और भी बहुत सारे सवाल डियर मसी दिल से शो पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देर में साथ में पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे उनके जवाब। मीनवाइल मैं आरजे नुपुर आपके लिए लगा रही है ये गा।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. What? Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
4: It's a Masti Partner event.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं यहाँ पर अंतरा आपके साथ, एंड जैसा कि आपको पता है दैट देयर इज अ टाइम जहां पर अंतरा यहाँ पर ऑन एयर अकेली नहीं होती है। हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे संघर्ष साथी श्रीधर, हु इज ओवर हियर ऑलरेडी। हाय श्रीधर, वेलकम बैक टू डियर मस्ती।
2: थैंक्स अंतरा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड ग्रेट टू बी बैक।
1: So well, आज जो श्रीधर केस लेके आए हैं, अभी बस हम लोग यहाँ पे साथ में बैठे ही हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट एंड वी वर लाइक दैट या दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन। सो श्रीधर, आई विल जस्ट लेट इट गो टू यू, बताए हमारे को इस केस के बारे में दैट व्हाट वाज इट ऑल अबाउट।
2: सो एक कॉल आया था, आई एम फीलिंग वेरी एंक्शियस, प्लीज हेल्प मी आउट इमीडिएटली। मैं बोला यार anxiousness has a wide range, so kis baat ki anxiousness hai, so we had to do a bit of inquiry. So usne bola it is about relationship. Bola yaar relationship, everybody gets anxious, so be specific, be more specific. Phir usne bola can you please not share with anyone, don't tell my name out. Nahi nahi aisa nahi hota hai, I mean if you are facing a problem there are others facing the same problem as such, so we'll try to help out. So usne bola ki 4 साल पहले his sister-in-law was getting unusually close to him. You can imagine unusually. So he is now scared that she's going to go out and she's going to frame him that he was the bad guy.
1: Ooh.
2: So this was his anxiety, and it happened about 4 to 5 years back. That's what he said.
1: Mm-hmm.
2: So this needed a bit of introspection from my side as well, and we had to weigh out the pros and cons, kya hua, kya hoga, kya nahi hoga, to help him out.
1: Wow. And I feel this is one of those cases जहाँ पर दिस इज वन ऑफ दोज इमोशंस और एंजाइटी इमोशंस जो कि आप ना अपने आसपास किसी को भी नहीं बता सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू टेल टू अ स्ट्रेंजर हु इज अ ब्लैंक स्लेट एंड वुड लिसन टू दैट पर्सन फ्रॉम द वेरी लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड विच इज व्हाई दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ डियर मस्ती दिल से has been working so well with the people, because we are like stranger but aapke dost yahan par, we have absolutely no idea ki kahan se kya aa raha hai, but well kya perspective Sridhar ka raha is pe and what did he suggest usko janne ke liye we will have to take a break and come back and we will get to know. Till then yeah, aap hamare saath bane rahiye on Dear Masti Dil Se. Main hu Antra, saath mein hai hamare sanghash saathi Sridhar.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back everyone to Dear Masti Dilse. This is your Sangharsh Sati Sridhar on Radio Masti 24/7 with the ever bubbly Antha.
2: एक बहुत ही ऐसा केस की यहाँ पर बात चल रही थी जहाँ पे श्रीधर ने बताया दैट दिस गाय हु कॉल्ड एंड सेड दैट कि बहुत एंशियस उनको फील हो रहा है एंड दिस इज अ रिलेशनशिप इशू। 4-5 साल पहले जो है उनकी सिस्टर इन लॉ जो है उनसे काफी क्लोज होने की उनसे कोशिश की एंड नॉट लाइक वेरी अनयूजुअली क्लोज काइंड ऑफ अ थिंग, बट उनको ये डर आ गया कि बाद में जाकर वो कहीं पूरी की पूरी बात सिर्फ और सिर्फ इन पे ही ना डाल दे। राइट श्रीधर, इफ आई गॉट दैट
1: राइट? करेक्ट।
2: सो श्रीधर, व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट शुड ही, व्हाट ही डिड?
1: ऐसे ऐसे केसेस में ना मुझे सच जानना बहुत जरूरी था, तो फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हिम इज देखो फिजिकल इंटीमेसी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सो ही सेड नहीं, फिजिकली कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने बोला व्हाई डिड यू थिंक दिस काइंड ऑफ फीलिंग वाज डेवलपिंग? ही सेड नो, इट वाज वेरी सेड्यूसिंग टाइप एंड थिंग्स लाइक दैट, सो इट इज वेरी एविडेंट। तो फिर मैंने पूछा कब हुआ था ये? So he said, जब शादी हुई थी पहले, so it was around 4 or 5 years back. फिर मैंने पूछा हस्बैंड करते रहते थे? तो he said he was working some night shift. तो then I asked how is the family now? तो उसने बोला अब 2 बच्चे हैं and everybody seems to be happy and things like that. And I said after the 4 years did anything happen? Were there any recent instances कि अचानक तुम्हें ऐसा डर क्यों हो गया? You know, why did you suddenly start feeling this? He said, "Nahin, all of a sudden, I just visited them once, then suddenly I got this feeling. You know, so I think they're staying in different places; they're not staying together. So, achanak I got this feeling. So, iske liye we really had to break it down and look at it purely from logic aspect. So, maine pucha, agar usne ye kaam kiya, first of all, physical distance maintain kar lo, thoda, don't keep interacting or don't get very close. That creates half the issue. Half the issue is solved there." Then I did tell that he was scared that agar wo WhatsApp message kuch bhejegi, if I don't reply, she will think that I'm creating a distance. Aisa nahi, I said, casually reply karo, just keep it to that. There is no issue with that. Second thing I did is, dekho, who is going to lose more if she goes out and burns this bridge? Mm-hmm. So you said family-wise, she is very happy. 2 bachche hai and husband hai and everything is working good in their side. So the fear aspect of something may happen, I just said, is going into overthinking mode. So we had to condition this in different ways for him to accept it, and will be. We worked on a small mindfulness technique. Jab bhi wo anxiousness aati thi, so what he could do to bring it down. So far seems to be okay. ज्यादा मैसेज आया नहीं, ऑन एंड ऑफ ही वुड मैसेज, नो आई एम फीलिंग स्केयर्ड, नो, बोलता हूं ठीक है आ जाओ कॉल पे, वी जस्ट डू अ स्मॉल सेशन एंड देन लेट गो।
2: माय क्वेश्चन हियर इज दैट ये जो 4-5 साल पहले जो भी हुआ था, सो वाज ही आल्सो इन्वॉल्वड लाइक इमोशनल साइड?
1: हां, दैट इज व्हाट आई आस्क्ड हिम, दैट्स व्हाई पहले पूछा था। ही सेड यस, देयर वाज अ बिट ऑफ अट्रैक्शन। उसने बोला अट्रैक्शन थी वहां पे एंड बट आई फेल्ट इट इज वेरी रॉन्ग, सो आई हैड टू ड्रॉ बैक।
2: Wow, these kind of things also happen, and that is why this platform is there. We can discuss anything. Thank you, Sridhar, for sharing another case with us over here, and hope it helps a lot of people if they are listening to us. And you know, we are doing what we are supposed to do, helping them out without letting them know much.
1: True. Thanks, Antha. And just to all the listeners, right? No problem is a small problem. If it is affecting your day-to-day activity, it is a problem. So reach out, get perspectives, see what works, see what doesn't work, and then come ahead.
2: Yes, and we are always over here. Yeh hai Dear Masti, Dil Se, stay tuned with us.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: जो अच्छी आदतों की लिस्ट है ना, वो तो छोटी होती जा रही है और वाइसी वर्षा दूसरी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, तब समझ लेना कि लाइफ में थोड़ी तो दिक्कत है बॉस। डियर मस्ती दिल से शो, मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली जो मेरे हाथों में लेटर आया हुआ है, उन्होंने जो कन्फेस किया है वो आज के टाइम की सच्चाई बन गई है। मतलब ये जान लो तो दिक्कत, ना जानो तो दिक्कत। तो जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उन्होंने बोला है कि हाय, डेफिनेटली मुझे ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, बट द पॉइंट इज कि मुझे मेरे पार्टनर का मोबाइल फोन चेक करने की आदत लग चुकी है। जैसे ही वो ऑफिस से आती है और मेरा उसके फोन को कॉर्नर पे ले जाना और जस्ट चेक करना, स्क्रॉल करना आदत सा बन गया है। एंड ऐसा नहीं है कि कभी मुझे कुछ मिला हो, बट हाँ मेरे पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके चलते मैं आज भी बहुत डर डर के रहता हूँ। तो मुझे ऐसे ही डर में रहना चाहिए, मतलब पहले ही सिक्योर रहना चाहिए, या फिर ये सही नहीं है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे आपका डायरेक्शन सही नहीं लग रहा है, आपकी सोच तो सही लग रही है। चलिए ठीक है, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है मैं उनको बता दूं, आप सेफर साइड तो चल रहे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक सो कि आप किसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हैं? हाँ अच्छा, कोई आपसे एकदम लॉयल है और आप लगातार उस पर शक कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि उसे पता भी नहीं चल रहा है, पर आप क्या खुद से खुद की नजरें मिला पा रहे हैं? चलो ठीक है, ये सारी बातें भी किनारे रख देते हैं। जिस दिन उन्होंने आपके संग ये ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया कि वो हर रोज आपका सेलफोन चेक करें, तो आपको कैसा लगेगा? बस वो फील आप एक बार फील कर लो ना, उसके बाद शायद आप जबरदस्ती ये चीजें ना करो, ठीक है?
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे।
1: बिल्कुल, डियर मस्ती दिल से शो पर ऐसे ही बड़ी सारी बातें और बड़े सारे सवाल और जवाब कर रहे हैं अनोनिमस तरह से आपका इंतजार। डियर मस्ती दिल से शो।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Krishival nuts only on GGmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: And with that, we come to an end of another beautiful episode of Dear Masti Dil Se. Jaate jaate, main actually emotions ke baare mein hi baat karna chahti hu, because we saw so many kind of emotions. Chahe wo Nupur ki chithiyon mein ho, chahe wo Renuka ki chithi mein ho, chahe wo meri chithiyon mein ho, chahe wo Sridhar ke case mein ho, which was very very hatke. Because throughout these conversations, कितने तरह के different emotions आए, कहीं प्यार था, कहीं frustration, कहीं relief, कहीं seduction, but उसके साथ guilt, कहीं दोस्ती, but उसके साथ hurt भी, कहीं किसी को space चाहिए तो किसी को reassurance चाहिए, and a very beautiful line which Sridhar said, and I would like to keep that with me for today. No emotion is a small emotion. है ना, एंड दैट इज सो ट्रू। हम बहुत इजीली अपनी फीलिंग्स को साइज देने लगते हैं कि इतनी सी बात पे हर्ट क्यों हो रहे हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे सैड नहीं होना चाहिए, लोगों की लाइफ में मुझसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। छोड़ो यार, कैसी स्टूपिड सी बात है। बट अगर वो स्टूपिड सी बात बार बार आपके दिमाग में आ रही है, then for you in that moment, it is not small. इसका मतलब ये नहीं है कि हर इमोशन पर इमीडिएटली रिएक्ट करना है, हर गुस्से में कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना है, हर हर्ट में रिलेशनशिप खत्म नहीं कर देना है, बट मे बी हर इमोशन को एक बार खुद से सरूर से सुनना चाहिए। Because sometimes, you know, जैसे jealousy tells us what we deeply want, guilt tells us what we care about, जब गुस्सा आता है tells us where something is not just not right, sadness sometimes simply tells you कि जो भी था it mattered to me, maybe emotion को respect करने का मतलब उसे control देना नहीं होता, it simply means not dismissing it before understanding it, and that's what we try to do here every single week. Tuesday jab hum aate hain sham ko on Dear Masti Dil Se, koi naam nahi, koi judgment nahi, but thodi si conversation, wo bhi dil se. Keep writing to us, hamare WhatsApp number pe 9158963. Filhal ke liye main Antra, and on behalf of Renuka, Nupur and Sanghash Sathi

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार, आदाब ख्वातीनो हजरात, आप सबका इस्तकबाल, अ वेरी वार्म हेलो। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव और यहाँ पर आपका हम सफर बनकर इस सफर में मैं आ गया हूँ। नाम है मेरा समर और सफर कौन सा, वो म्यूजिकल सफर जहाँ पर एक कहानी होती है, एक शख्सियत की कहानी, उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने आप तक हम पहुँचाते हैं और उनके वो अनसुने किस्से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो शायद आपने नहीं सुने थे। जी हाँ, सिंगापुर शुरू हो चुका है लेजेंड्स फिर से। सिंगापुर, आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो तो आप देखते होंगे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग क्रिकेट में दिलचस्पी न रखें। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो जरूर देखते हैं भाई। और क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है जब कोई बैट्समैन अपने पहले ही मैच में सेंचुरी लगा दे या कोई बॉलर जो अपना पहला मैच खेल रहा हो वो 5 विकेट या उससे ज्यादा विकेट ले ले। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका नाम एक स्पेशल लिस्ट में आ जाता है और वो खास प्लेयर्स हो जाते हैं। ऐसे फिल्मों में भी बहुत कम आपने देखा होगा कि पहली फिल्म की और पहली फिल्म में अवार्ड मिल गया हो, और अवार्ड भी कैसा, कोई ऑस्कर या फिर नेशनल अवार्ड। लेकिन आज हम ऐसे ही फनकार की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो कुछ ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस हैं जिनकी पहली फिल्म रिलीज हुई और उन्हें मिल गया नेशनल अवार्ड। तो सिंगापुर, उस फनकार का नाम आप गेस कर सकते हैं अगर आप ये गाना पहचान ले तो।

चलिए एक और हिंट दे देता हूँ, यह है मशहूर पोएट कैफी आजमी और बहुत ही मकबूल थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी की बेटी। अरे अब तो आप पहचान ही गए होंगे, मशहूर गीतकार शायर जावेद अख्तर की पत्नी है ये और फेमस सिनेमेटोग्राफर बाबा आजमी की बहन है, दी वेरी टैलेंटेड शबाना आजमी।

जिन्होंने पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा दोनों में अपना दबदबा रखा और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। आज के शो में हम इन्हीं की बातें करेंगे और इन्हीं की फिल्मों से कुछ गाने चुनकर लाए हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। आप सुनते रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स, फिर से समर के साथ।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti partner event.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
4: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: वेलकम वेलकम वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से, और मैं हूं आपके साथ समर। आज की हमारी फनकार है बेहतरीन अदाकारा शबाना आजमी। 18 सितंबर 1950 को शबाना आजमी पैदा हुई मुंबई में। इनके पिताजी के बारे में आपको बता चुका हूं मैं कि मशहूर गीतकार और शायर थे साहब, कैफी आजमी साहब, और इनकी माँ शौकत कैफी आजमी जो खुद स्टेज आर्टिस्ट थी, बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट थी। कैफी आजमी की विचारधारा कम्युनिज्म की तरफ थी, तो वो कम्युनिस्ट थे एक तरह से, तो उनके घर पर कम्युनिस्ट लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, और इसी सोच का शबाना आजमी पर भी प्रभाव पड़ा। शुरू में परिवार में पैसों की थोड़ी सी खींचतान रहती थी, पैसों की कमी ही थी। जो भी पास आते थे उनमें से एक बड़ा हिस्सा कैफी साहब कम्युनिस्ट पार्टी को दे देते थे, और हिसाब के 40 रुपए बचते थे तो उसमें फिर उनके घर का गुजारा होता था। शुरू में शबाना आजमी का म्युनिसिपल स्कूल में ही एडमिशन कराया गया इसीलिए, लेकिन शबाना को यहाँ पढ़ना नहीं था, तो एक तरकीब शबाना ने सोची। उन्होंने एग्जाम तो सारे दे दिए लेकिन कुछ लिखा नहीं, और फिर रिजल्ट आया, क्या आना था, नील बटा सन्नाटा, जीरो। बहरहाल रिजल्ट आने के बाद कैफी साहब समझ गए कि शबाना यहाँ पढ़ना नहीं चाहती, तो फिर उन्होंने इनका एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में, क्वीन मैरी स्कूल में करवा दिया। लेकिन इस स्कूल में एक रूल था, और रूल ये था कि स्टूडेंट के माँ बाप को भी अंग्रेजी आनी चाहिए। अब साहब कैफी साहब और उनकी बीवी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, तो कैफी साहब के एक दोस्त ने कहा कि मैं और मेरी बीवी दोनों शबाना के पेरेंट्स बन जाएंगे स्कूल में। तो सिंगापुर इस तरीके से स्कूल में एडमिशन मिला शबाना आजमी को। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। आप सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। मैं हूं समर।

0: got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: Healthy khao, protein khao.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao.
2: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click dur.
3: Gigi.
2: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: Gigi Mart, your personal grocer.
4: Aap sun rahe hain Legends phir se Summer ke saath.
5: रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ. बताइए कैसा लग रहा है आपको ये शो. कैसे बताएंगे, अरे हमारे फेसबुक पेज पर आ जाइए अभी के अभी और बताइए वहां लिखकर कैसा लग रहा है आपको ये शो. ब्रेक पर जाने से पहले हम शबाना आजमी के स्कूल एडमिशन की बात कर रहे थे. स्कूल में शबाना आजमी ड्रामा भी करती थी, लेकिन इनको ज्यादातर रोल लड़कों के मिलते थे क्योंकि ये कुछ टॉम बॉयज थी. जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती तो माँ इन्हें पृथ्वी थिएटर ले जाया करती छुट्टियों के दिनों में, वेकेशंस में, क्योंकि वहां वो खुद थिएटर करती थी, शौकत आजमी जी. तो यहाँ शौकत आजमी शबाना को अक्सर लेकर जाया करती थी, या यूं कहूं कि हर बार ही लेकर जाती थी. तो पृथ्वी कपूर साहब ने उन्हें देखा और शबाना के लिए ड्रेस बनवा ली, तो इनको भी ग्रुप में कोई रोल मिल जाया करता था. स्कूलिंग पूरी होने के बाद इन्होंने सेंट जेवियर्स में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए और यहाँ से साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू कर दी. और यहाँ ये साइकोलॉजी की पढ़ाई कर ही रही थी कि यहाँ इनकी मुलाकात हो गई फारूक शेख से. वही फारूक शेख जो आगे जाकर बहुत बेहतरीन एक्टर बने और शबाना आजमी के साथ उन्होंने कई फिल्में की. हालांकि ये इनसे यानी शबाना से 2 साल सीनियर थे, लेकिन बहरहाल अच्छी दोस्ती हो गई इनकी. अच्छी दोस्ती होने का एक रीजन भी था. एक्चुअली इनके कॉलेज में इंग्लिश थिएटर हुआ करता था, हिंदी नहीं होता था. तो इन दोनों ने, मतलब शबाना और फारूक शेख ने, अपना एक ग्रुप बनाया और उसमें हिंदी में थिएटर करने लगे ये. और कमाल की बात ये थी कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भाग लेना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार शबाना और फारूक शेख ही टॉप एक्टर का अवार्ड जीतते थे. कॉलेज के दौरान ही इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म देखी जो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के स्टूडेंट्स ने बनाई थी. इस फिल्म का नाम था सुमन और इस फिल्म की एक्टर थी जया बच्चन, जो उस समय जया भादुड़ी थी. उन्होंने इस फिल्म में परफॉर्म किया और शबाना को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और उन्होंने सोचा कि मैं भी अगर इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूं तो मैं भी ऐसी फिल्में कर सकती हूं. एंड अल्टीमेटली कॉलेज के बाद इन्होंने FTII में एडमिशन ले ही लिया. वेल, सिंगापुर शबाना आजमी की ये कमाल की कहानी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कुछ कमाल की गाने उन्हीं की फिल्मों से सुनने का वक्त है. आइए सुन लेते हैं, फिर मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं मेरे यानी समर के साथ, लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं आप, और आज बात हो रही है शबान आजमी की। अच्छा, शबान आजमी के पिता यानी कैफी आजमी साहब, जो एक मशहूर शायर थे और गीतकार भी थे, बहुत सी हिंदी फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे और बेहद कमाल के गाने लिखे। लेकिन क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही होता है ना। मतलब जब शबान आजमी छोटी थी तब उन्हें लगता था कि मेरे पापा तो कुछ करते नहीं है, सारे दिन लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मतलब उन्हें लगता था कि जो इंसान रोज सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाते हैं या फिर शाम को बैग लेकर वापस आते हैं, वो लोग कुछ करते हैं, मेरे पापा तो कुछ करते ही नहीं। लेकिन जब एक दिन कैफी साहब की फोटो अखबार में आई तब उन्हें पता चला और उनके दोस्तों ने कहा, शबाना देखो तुम्हारे पापा की फोटो न्यूज़पेपर में आई है। उसके बाद शबाना को लगा कि वाकई में मेरे पापा भी कुछ करते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि शबाना ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। यहाँ जब ये फाइनल ईयर में थी, यानी जब ये दूसरे साल में थी, तभी इनको फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए साहब। पहला ऑफर इनको आया ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म फासला के लिए, और दूसरा फिल्म कांतिलाल जी की एक फिल्म थी परिणय। लेकिन उस वक्त ये पढ़ रही थी तो इन्होंने तुरंत शूटिंग शुरू नहीं की। लेकिन जब पूरी पढ़ाई हो गई उसके तुरंत बाद इन्होंने इन दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन इन्हीं दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही इन्हें एक और फिल्म ऑफर हुई और वो थी अंकुर। ये फिल्म बना रहे थे श्याम बेनेगल साहब, जो पैरेलल सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर क्या हुआ बताएंगे ना, अभी कहाँ जा रहे हैं हम वापस आएंगे मतलब इन गानों के बाद, क्योंकि आगे की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। इसलिए अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप भी कहीं नहीं जाएंगे ऐसा वादा कीजिए, सुनते जाएंगे रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: वेलकम बैक सिंगापुर लेजेंड्स, फिर से मैं एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। मेरा नाम है समर और आज मैं कहानी जिनकी सुना रहा हूँ वो है शबाना आजमी। तो साहब मैंने कहा कि शबाना आजमी जब FTII से निकली तो अब एक साथ वो तीन फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, लेकिन अब देखिए जो तीसरी फिल्म उन्होंने साइन की ना, यानी अंकुर, ये फिल्म सबसे पहले रिलीज हो गई 1975 में और इस फिल्म के लिए शबाना आजमी को मिला नेशनल अवार्ड, यानी पहली फिल्म और पहला नेशनल अवार्ड।
6: खाने को खाना गत नहीं है, पहनने को चिंदियां गत नहीं है, पर पीने को होना। एक मैं हूँ जो इधर से उठा के उधर से चुरा के खाने को लेखवाती हूँ, पर इसको शर्म नहीं है। अरे बच्चा नहीं है तो सेंधी पी के मरेगा क्या?
5: इस फिल्म के बनने के दौरान कुछ मजेदार बातें हुई। दरअसल ये फिल्म एक गांव की कहानी है और इस फिल्म की शूटिंग के लिए शबाना पहली बार किसी गांव में गई थी तो

फिर वो लड़के बोले, चलो ठीक है, और तुम क्या करती हो इधर? शबाना बोली, मैं यहाँ आया का काम करती हूँ साहब, आया का रोल कर रही हूँ। तो ये सब शाम बेनेगल साहब देख रहे थे और उन्होंने शबाना से कहा कि अब तुम हमारे साथ लंच कर सकती हो, क्योंकि तुमने इन लड़कों को कन्विंस कर दिया कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। और सिंगापुर इस फिल्म में शबाना ने जबरदस्त एक्टिंग की, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, जिसका जिक्र मैंने किया। अब जब अवार्ड मिल गया तो कुछ मीठा हो जाए, मीठे के लिए एक ब्रेक, क्या कहते हैं आप? तो इस ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। मैं हूं समर लेजेंड्स वाला, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर लौटूंगा शबाना आजमी की कहानी यहीं पर।

एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। पहली फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बाद शबाना आजमी की पहली कमर्शियल फिल्म आई फकीरा। शशि कपूर इनके हीरो थे और ये फिल्म भी हिट रही। लेकिन इस फिल्म में गाना जो बेहद कमाल का था, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। इस गाने के लिए शबाना बोलती हैं कि चूंकि मैंने इससे पहले 3 फिल्में की थी और वो सारी की सारी 8 फिल्म्स थी, तो मुझे इस फिल्म में गाना गाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि आर्ट और कमर्शियल फिल्म दोनों अलग अलग तरह की होती है। एंड उसके बाद मैं इस तरह की फिल्में बड़े आराम से करने लगी। में ही फिर एक बार श्याम बेनेगल के साथ वो लौटी और फिल्म निशांत में नजर आई शबाना आजमी, और ये फिल्म भी अंकुर की तरह हिट रही। सिंगापुर इसी दौरान उन्होंने काफी सारी कमर्शियल फिल्म भी की और साथ में 8 फिल्म्स भी वो पैरेलल सिनेमा जो था उसे भी लगातार करती रही। मतलब किसी तरह से दोनों तरह की फिल्मों में वो बैलेंस बनाए चल रही थी। चल हम भी रहे हैं शबाना आजमी की कहानी को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक की दरकार है सिंगापुर। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे और शबाना आजमी के फिल्मी सफर की बातें करेंगे। You stay connected with Radio Mazi 24/7 Live Singapore's only Hindi radio now on the go.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti Partner event.
2: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
3: खवातीनों हजरात, एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं समर, जो सुना रहा हूं आज आपको शबाना आजमी की कहानी, ऑफ कोर्स अपनी जुबानी। उनकी फिल्मी जिंदगी की कहानी की बात करते हैं। 1977 ये वो साल था इनके लिए जो बड़ा कमाल का रहा साहब। इस साल इनकी 10 फिल्में आईं, इसमें से 3 फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। 2 फिल्में तो इन्होंने की मनमोहन देसाई साहब के साथ, अमर अकबर एंथनी और परवरिश, और एक फिल्म सत्यजीत रे के साथ, वो भी सुपर हिट रही, शतरंज के खिलाड़ी उस फिल्म का नाम था। अमर अकबर एंथनी तो इस साल की सबसे बड़ी हिट थी और परवरिश भी खूब जमकर चली। और सभी फिल्मों में शबाना का काम बेहद कमाल का था, नोटिस भी किया गया और तारीफें भी बहुत बटोर ले गया। अच्छा, परवरिश का एक गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग था और खूब चला, और वो गाना था

लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए। फिर 1978 में स्वर्ग नर्क इनकी फिल्म आई, ये भी हिट रही साहब। 79 में लहू के दो रंग, यानी हर साल एक फिल्म तो शबाना हिट दे ही रही थी कमर्शियली। लेकिन फिर 1980 में आई स्पर्श, ये फिल्म सई परांजपे ने डायरेक्ट की थी। और इस फिल्म में इनके साथ नसीरुद्दीन शाह थे, जो एक ब्लाइंड स्कूल के टीचर होते हैं, खुद भी ब्लाइंड होते हैं वो। ये फिल्म उस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी रही और इस फिल्म को उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला और नसीरुद्दीन शाह को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। शबाना आजमी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया था, लेकिन ये अवार्ड वो जीत नहीं पाई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें नोटिस किया जा रहा था और उनके दमदार अभिनय को सम्मान योग्य भी समझा जा रहा था, तो कुल मिलाकर सिंगापुर शबाना आजमी इस वक्त तक एक दमदार एक्टर के तौर पर जम चुकी थी बॉलीवुड में। और भी कई फिल्में की इन्होंने, लेकिन हम उनकी बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। यू स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: जीजी मार्ट, your personal grocer.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। और आज बात हो रही है शबाना आजमी की, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने ऐसे रोल प्ले किए जो वुमेन सेंट्रिक थे। और उन्होंने इन फिल्मों से बताया कि फीमेल एक्ट्रेस भी अपने दम पर फिल्म को हिट कर सकती हैं। शबाना आजमी ने अपने अब तक के पूरे करियर में 140 फिल्में की हैं,

इस फिल्म ने उस साल का नेशनल अवार्ड जीता। सिंगापुर मतलब हाल ये था कि शबाना जो भी फिल्म उस वक्त करती थी, मैं पैरेलल सिनेमा की बात कर रहा हूँ, तो या तो उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल जाता था या उस फिल्म के किसी एक्टर को। ऐसी थी अर्थ भी। इस फिल्म के साथ कुछ अजीब चीजें थी, जैसे कि जब ये फिल्म बनी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अच्छी लगी और वो इसे खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी। वो ये कह रहे थे कि आप इस फिल्म का एंड बदल दीजिए, क्योंकि इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई मर्द अपनी बीवी से माफी मांगे और बीवी न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप इसे चेंज कर दीजिए। लेकिन महेश भट्ट साहब कन्विंस थे कि नहीं, ऐसा ही है, मेरी एक्ट्रेस ऐसा ही कर रही है, यही मेरे पात्र की कहानी है और वो नहीं लौटेगी। वो अड़े रहे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी झुक गए और इस फिल्म में कोई चेंज नहीं किया गया, मतलब इसका एंड बदला नहीं गया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सबने इसकी बहुत तारीफ की और इस फिल्म के लिए भी शबाना आजमी को नेशनल अवार्ड मिला। ये इनका दूसरा अवार्ड था, लेकिन अभी तीन बाकी हैं और भी कुछ फिल्में, उनका भी जिक्र बाकी है, वो करेंगे हम इन गानों के बाद। यू स्टे कनेक्टेड टू रेडियो 24/7 लाइव। सिंगापुर का ये एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो है, इसलिए आप इसे जमकर सुनिए, जोश में रहिए और मस्ती कीजिए।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
2: वेल, आप हमारे शो के बारे में हमारे फेसबुक पेज पर आकर बता रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. और बता भी सकते हैं, आप कोई गाना सुनना चाहें जो शबाना आजमी का आपको सुनना है, मतलब उन पर पिक्चराइज कोई गाना सुनना है, तो आप हमें आकर बताइए. अभी शो में वक्त है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए. फिलहाल अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शबाना आजमी कम्युनिस्ट परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो कम्युनिस्ट सोच उनकी हमेशा से रही है. वो कहती हैं कि उन्होंने अपने अब्बा और अम्मा से बहुत कुछ सीखा है. कैफी साहब हमेशा कहते थे कि कला को शस्त्र के रूप में काम में लेना चाहिए. एक ऐसी फिल्म आई थी 1984 में, पार. ये फिल्म गौतम घोष ने बनाई थी. इस फिल्म में शबाना के अलावा नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी और उत्पल दत्त भी थे. नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ ये इनकी दूसरी फिल्म थी. और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब ये किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो वहाँ एक बाई आया करती थी सफाई का काम करने के लिए. तो शबाना उस बाई को बड़ी गौर से देखती थी, क्योंकि शबाना को एक ऐसा ही रियल लाइफ कैरेक्टर चाहिए था, ताकि उसको देख के वो उसे ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि फिल्म में इसी तरह का उनका रोल था, एक आम इंसान का. तो हुआ यूं कि वो बाई रोज आती थी और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई. शूटिंग पूरी हो गई और ये फिल्म बेहद कमाल की हिट हो गई. और एक बार फिर इस फिल्म के लिए शबाना आजमी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला.
3: मत करो ये काम, इतना बड़ा नदी, इतना चौड़ा, इसको पार मत करो ये काम.
4: ए, पागल हो गई ये काम, मत करो ये काम. कौन देगा 20 रुपया? हाँ बता.
3: नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, मत करो ये काम.
4: तो भूखा मरेगी है?
3: नहीं,
4: भूखा मरेगी
3: हमसे नहीं होगा. पेट में बछुआ लेकर नदी पार,
4: तू और मरे तेरा बछुआ, ले भाग यहाँ से, हम अकेला कर लेंगे, जा.
2: और इसी के साथ इस फिल्म के लिए उन्हें इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला. लेकिन शबाना आगे बताती हैं कि शूटिंग के बाद जब वो उस औरत के घर गई, वो जो बाई थी उसके घर, तो वहाँ शबाना ने देखा कि वो औरत एक कमरे में रहती है जहाँ खिड़की भी नहीं है, यानी घुटन. और उस घुटन भरे कमरे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 लोग रहते थे. फिर शबाना ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही यहाँ से चली गई मुंबई, तो ये इस औरत के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर मैंने इसे दोस्त बनाया है, तो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे इसलिए बात करती हूँ ताकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर को समझ सकूं. इसलिए शबाना ने उस औरत के परिवार को आर्थिक मदद दी और उसके बेटे को पढ़ाया भी. और फिर यहीं से शबाना को ख्याल आया कि क्यों ना इस तरह के लोगों की हेल्प की जाए. इसी साल एक और खुशी शबाना की लाइफ में आई. वो क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद. यू स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मसी 24/7 लाइव. मैं हूं समर आपके साथ.

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत। मैं हूं समर और आज हम कहानी सुना रहे हैं आपको शबाना आजमी की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि 1984 में शबाना आजमी को नेशनल अवार्ड के अलावा एक और खुशी मिली, और वो कौन सी खुशी थी आपने शायद गैस कर लिया होगा। जी, इसी साल उनकी शादी हो गई सिंगापुर। जिनसे उनकी शादी हुई आप भी जानते हैं, बॉलीवुड के मशहूर शायर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर उनका नाम है। तो इनके साथ इन्होंने 9 दिसंबर 1984 को शादी कर ली और वो शादी बहुत ही सक्सेसफुल रही और आज भी चल रही है, और हम दुआ करते हैं कि इन दोनों का साथ यूं ही बना रहे। शबाना जावेद साहब के बारे में कहती हैं कि जावेद में मुझे अब्बा की तस्वीर दिखती है और आज जो कॉन्फिडेंस आप मुझ में देख रहे हैं ये सब जावेद की वजह से आया है। आई एम वेरी लकी कि मुझे जावेद जैसा पति मिला। और फिर 1999 में फिल्म आई गॉड मदर। जैसे हॉलीवुड में गॉड फादर सीरीज, वैसे ही बॉलीवुड में गॉड मदर। इसके लिए भी शबाना को नेशनल अवार्ड मिला और इस फिल्म ने तो हंगामा मचा दिया। और शबाना आजमी की इतनी तारीफ हुई इस फिल्म के लिए कि भैया क्या कहा जाए, यानी 8 फिल्मों का दूसरा नाम शबाना आजमी हो गया।
2: तेरे को फोगो नहीं मर रहा था ना, मैंने मार डाला साड़ी को कुत्रे की मौत। आज मरेगी तेरे भाई की आत्मा को शांति। आंखें बाढ़ पड़ के क्या देख रहा है? औरत की अकल चूड़ा फूकने में नहीं फूक जाती, मर्द उस पर पांव धर के खड़ा हो जाता है। बोल देना अपने केसू भाई को कि तालुका पंचायत का चुनाव में लड़ूंगी।
1: शबाना आजमी ने बहुत से एक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे राजेश खन्ना साहब के साथ। इनके साथ इनकी कई सुपरहिट फिल्में आई जिनमें मेरी तो फेवरेट अवतार है, जिसका वो गाना बेहद कमाल का है,

राजेश खन्ना तो शबाना को लगी जाम कहते थे। इसके अलावा विनोद खन्ना, जी हाँ विनोद खन्ना, फारूक शेख, लेकिन शबाना आजमी को नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी के साथ फिल्में करने में ज्यादा मजा आता था। उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी उनकी एक्चुअली। हालांकि एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी साहब जब नए नए आए थे और शबाना इनसे काफी पहले आ चुकी थी और कई हिट फिल्में भी कर चुकी थी,

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: रात अकेली है
3: तो क्या, हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
2: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो
2: Thanks Travigant Girls Uptown Girls I know the 90s we love you to the extreme and maximum All right.

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
1: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

अच्छा अभी मौसमों का बदलना बाकी है, ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा कुछ दूर सा।

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: ये यार

UFO की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से,

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: चलो अब देश के मशहूर गायक श्री नरेंद्र चंचल अपनी मशहूर और सुरीली आवाज में आपका मनोरंजन करें। श्री नरेंद्र चंचल।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विट करे मौसम, आओ ट्विट करे

ही आओ ट्विट करे गुटा मौसम आओ ट्विट करे जिंदगी है यही।

दाद रहना।

सुबह 6 बजे तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

एक ही ईश्वर है, उसका नाम ही सत्य है। There is one God and His name is the truth.

0: टक टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। कुछ लोग ना आजकल बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और उनका खर्चा भी नहीं हो रहा है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, बताती हूँ मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नंबर वन अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और खर्चा भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप मेरी बात माने तो। एंड दैट इज कि आप बस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाइए और वहां जाकर जो चीजें आपको पसंद है ना, बस उनको अपने कार्ट में ऐड कीजिए और भूल जाइए। आप फिर 20 से 25 दिनों के बाद उस कार्ट पर वापस जाइए और सोचिए कि क्या ये चीज खरीद कर आपकी लाइफ कुछ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, पीछे हट रही है, कुछ एडिशन से आपको वन अप मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट, तभी उस चीज को खरीदिए। इसमें होगा क्या, 5 में से सिर्फ एक चीज ही आप परचेज करने की हिम्मत करोगे, राइट? और बस आपका खर्चा कम होएगा और आप सेटिस्फाइड भी रहोगे। देखो ये तरीका ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप यूज करो फिर थैंक्स मी लेटर। डेफिनेटली ऑन दिस नोट मैं आज के ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ एंड बहुत सारी बातें, बहुत सारी गाने एंड बहुत सारी गॉसिप्स लेकर आ चुकी हूँ मेरी जान। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: रहो। आज मेरे साथ पता है सुबह से क्या हो रहा है, मैं एकदम सूनी कलाई यानी रिस्ट एकदम ब्लैंक लेकर घर से आ गई हूँ। बार बार बार बार अपना हाथ जो है मुड़ मुड़ के देख रही हूँ कि कितना टाइम हुआ है। मतलब लिटरली मैं उनमें से हूँ जो खाली हाथ घर से बाहर निकलते ही नहीं। आप भी उनमें से हो क्या? आपको भी रिस्ट वॉच पहनने का एकदम नशा सा चढ़ा रहता है? हाय हाय, सेम पिंच मेरी टाइम रेडियो मसी 24/7 लाइफ पर मैं आ चुकी हूँ पर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड कुछ कुछ सिमिलैरिटी नहीं, हम में शायद बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। मतलब बात की गहराई को समझिए, जब वक्त अच्छा चल रहा होता है ना तब बहुत कुछ सामने से चल कर आ रहा होता है, और जब वक्त खराब चल रहा होता है तो कोई फोन तक नहीं उठाता है। हाँ, डेफिनेटली ऑन दिस नोट याद दिलाना चाहूंगी कि ये बात सबसे ज्यादा याद रखते हैं कौन? बड़े बड़े फिल्मी सितारे। ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक पुराना एक्सपीरियंस बताया है कि कुछ साल पहले जब गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी उनकी बहुत पॉपुलर हो गई थी ना, तो उसके बाद उनके पास 200 स्क्रिप्ट्स थी बॉलीवुड की एंड ब्लैंक चेक्स भी उनके घर पहुंच गए थे, बस इनकी हाँ का इंतजार किया जा रहा था मेरी जान। हाँ, सो डेफिनेटली ये एक्टर्स के भी अच्छे दिन आते हैं, बस इन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है और पेशेंसली एक डिसीजन लेना पड़ता है कि ये करे या ना करे। तो चलिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। क्या करना है गानों के साथ साथ और क्या चल रहा है सब कुछ बताऊंगी जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।
3: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: Saturday night का plan? Party, concert या फिर भजन बैठक? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a must-be partner event.

0: ಬನ್ನಿ.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: इमेजिन कोई आपसे ये पूछे कि सुनो ये जो आपने साड़ी पहनी है ये आप कहाँ से लाई हो, हाँ, और ये जो आर्टिफिशियल गजरा लगाया हुआ है ये कहाँ से लिया है, और ये आपके घर पे घुसते ही लिविंग एरिया में जो वुडन पेंटिंग लगी है ये कहाँ से ली है, और इन सबका जवाब ये हो कि इंडिया से नहीं आया है, सिंगापुर से लिया है, तो मतलब मजा ही आ जाएगा आपको, हाँ। या फिर आपसे कोई बोले आपने अपना बिजनेस जो है ना वो बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगाया है, जरा उसका नाम बताओ, मैं भी वहां लगाना चाहूंगा। इस सवाल का जवाब भी यही होगा। हाँ जी, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, मैं आज इन पर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या सिंगापुर में आ रहा है जहां पर पर्सनली भी हमें बहुत कुछ मिल सकता है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। डेफिनेटली बताना चाहूंगी, माउंटबेटन CCIAEC प्रेजेंट्स फेस्टिव बाजार 2026 आ चुका है, एंड ये जो है ना आपके जितने भी फैशन रिलेटेड इस फेस्टिव सीजन में या शादियों के सीजन में जो भी दिक्कतें हैं वो सारी सॉल्व कर देगा। आप लॉट्स ऑफ शॉपिंग कर सकते हो यार, एंड हैंडीक्राफ्ट से लेके होम डेकोर से लेकर फेस्टिव प्रोडक्ट से लेकर गिफ्टिंग से लेकर हर एक चीज आप ले सकते हो। 27th of September 10 AM to 6 PM आप पहुंचिए यहाँ पर माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल, एंड आप खुद के लिए भी टेबल्स बुक करवा सकते हो, खुद के भी बिजनेस शोकेस कर सकते हो, रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। और बाकी जगह सिंगापुर में जब कोई इवेंट आता है ना तो चीजें बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है कि क्या कमाएं और क्या स्टॉल लगाएं, पर इसमें यह है कि प्रीमियम टेबल आपको $100 में मिल रही है, स्टैंडर्ड टेबल $80 में मिल रही है, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल है ना, तो आप ये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ज्यादा डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए 8330-2518 पर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर, डोंट गो एनीवेयर।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. The Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood come music, energetic dancing, good Indian food, and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12 11th टू 25th सितंबर शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
4: जीजी
3: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
4: GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: ऐसा होता है कुछ लोगों को ये सोचना चाहिए कि इतना सच भी नहीं बोलना होता है। हाँ, रेडियो मसी 24/7 लाइफ पर मैं आज यहीं पर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड वो लोग जो एक्सट्रीम सच बोल देते हैं ना, तो लोग जरा उनको हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, कि नहीं बोलना चाहिए था यार। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि सच बोल ही देना चाहिए और टाइम से बोल देना चाहिए। रेडियो मसी 24/7 लाइफ पर मैं आज यहीं पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली बहुत सारी बातें एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की और मूवी के शूटिंग के दौरान की निकल कर आती रहती है। लेकिन कुछ साल पहले गोविंदा जी जिस तरह से रातों रात मेहनत करने के बाद सुपरस्टार बन गए थे, उस दौरान की बातें अब निकल कर आ रही हैं। लोग कह रहे हैं जरा देखो इन्हें, क्या क्या चल रहा था और क्या क्या हो रहा था। चलो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गोविंदा जी की जो वाइफ है वो तो बहुत बार बोल चुकी है कि जिस तरह से गोविंदा जो है ना वो एक्ट्रेसेस के संग फ्लर्ट करते थे या करते हैं या ऐसा है या वैसा है। लेकिन ऐसे में नीलम कोठारी, हाँ जी, जानी मानी हमारी 90s की एक्ट्रेस, उन्होंने बोला कि गोविंदा जी उनसे भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते थे और वो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इवन नीलम जी को ये तक नहीं पता था कि गोविंदा जो है ना वो शादीशुदा है, और ये चीजें एक जमाने में खुलकर बताई भी नहीं जाती थी। पूछो क्यों? क्योंकि बता देंगे तो इंडस्ट्री में जो आपकी इमेज है ना वो काफी बदल जाएगी। इस थॉट का फायदा उठाकर बहुत सारे एक्टर्स ने अपने टाइम पर ये बच बचा कर बहुत सारे गलत काम भी किए हैं एंड एक अलग डायरेक्शन भी चले गए हैं। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कुछ और भी बातें, लेकिन जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल, डोंट गो एनीवेयर।